0: मुझे नहीं पता था, और हमारे अच्छा। सुनने वालों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज मेरी मुझे एक नया शब्द सुनने में आया, उसकी मतलब समझ में आया, इधम। वाह क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए मोहन सर, यहीं पे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो ये कि आध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और शब्द है धर्म, वो पीछे नहीं रहता। तो अब धर्म का मतलब भी बताइए और मुझे ये समझाइए कि क्या धर्म और आध्यात्म में फर्क है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, मतलब इन दोनों के बीच क्या तालमेल है।
1: अच्छा, धर्म है आचरण, अध्यात्म है ज्ञान। अभी देखिए, मनुष्य में एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी है ज्ञाता, जो जानते हैं, और हमारी आचरण हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में रहे उसको धर्म कहते हैं। अभी अध्यात्म कहता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो अगर आचरण भी सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप के तालमेल में रहे तो मैं चिंतन क्रिया और बोली एक लाइन में रहे, जो क्रिया और बोली के जो एक लाइन में रहना, आचरण को धर्म कहते हैं। उसका गलत ट्रांसलेशन हो गया, मत के बराबर हो गया, लेकिन उसका धर्म का मतलब है आचरण, अपना कर्म, अपना स्वधर्म करना, उसी को धर्म कहते हैं।
0: जी जी जी, जितना मुझे समझ में आया मोहन साहब, जिस भी तरीके से हम अपनी जीवन शैली चलाते हैं
1: जी,
0: उचित आचरण करते हुए, बस उसी को धर्म कहते हैं,
1: उसी को धर्म कहते हैं।
0: क्या बात, बहुत खूब। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को सुन करके, धर्म क्या है और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सुंदर। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।
2: इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए, सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट को समझ पाए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति बिना धर्म का आचरण किए, यानी कि जिंदगी को जैसे हमको चलाना चाहिए वैसा ना करते हुए भी, क्या आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है क्या?
1: ऐसा है कि धर्म आचरण करे
0: जी
1: तो उसमें लोक संग्रह कहते हैं, लोक में उनका व्यवहार जो इस लोक में है, इस भूमि में है, उनका जो व्यवहार है वो एथिकल रहता है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म विचार करे
0: जी।
1: आध्यात्मिक विचार के लिए अंदर से एक योग्यता की जरूरत है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग। हमारे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आना चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं
0: जी, जी।
1: मैं किस लिए, वो कहते हैं भज गोविंदम, एक बहुत बड़ी टेक्स्ट है, उसमें कहते हैं मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन है, मैं जननी कौन है। तो ये जब सवाल, जब ये उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, तभी जाके हम अध्यात्म के ओर जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न ना किए भी हम धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार की कोई जरूरत ही नहीं है
0: जी। जी
1: तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई कैन बी एन एथिकल ह्यूमन बीइंग विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ इंक्वायरी।
0: ओके जी जी जी, ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी वेरी नाइस। दोस्तों इस बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों आचरण अपने आप से एक्सक्लूसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों का ही दामन पकड़कर चलें। बात मुद्दे की है अपने आप को पहचानने की, उचित आचरण करने की बात हो रही है।
1: उचित आचरण से क्या होता है, अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अपने आप, एक बार अपने आप को पहचान गए तो आचरण जो है वो बहुत ही आसानी से, अनायास से होता रहता है
0: जी। ओके तो बहुत सिंपल है, जैसा मोहन सर ने बताया, देख लीजिए दोस्तों, विचार करिए, और बहुत आसान है कि उचित आचरण। अब उचित आचरण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी, कि सभी लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि उचित आचरण क्या होता है, बस उसे फॉलो करते रहिए और आप आध्यात्मिक भी हो गए।
1: उचित आचरण में बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे देखिए, मुझे ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
0: जी,
1: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या ना बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं ना किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
0: जी।
1: और मैं एथिकल लाइफ, सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ, बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
0: भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का अब है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाएं। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले लें और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक बंगला है, मुझे दूसरा बंगला चाहिए
0: जी।
1: तीसरा है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु बोलता है कि भाई ईश्वर तुम क्या हो, ऐसे इतने सारे फर्क क्यों हैं, लोग में ये जो संसार में ऊपर नीचे किया क्यों है, ये संसार क्या है, ये जिज्ञासु है, ये ईश्वर से जानना चाहता है
0: जी।
1: और चौथा जो प्रार्थना है वो ज्ञानी का प्रार्थना है। वो आनंद लेता है ईश्वर की, ये देख ईश्वर की लीला देखकर आनंद ले लेता है। उसके मुंह में लिखते हैं, निकलता है बस शिवोहम शिवोहम शिवोहम का मतलब आनंद में देख रहा हूं
0: जी।
1: तो ये जो है याचना है, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर उससे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान

0: कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा, जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर, तो ये उस जो जो स्वयं प्रकाश नहीं है, जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं, उसे अनात्मा कहते हैं।
1: ओके।
0: जो स्वयं प्रकाश है, स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए, रात को मैंने फोन किया आपको
1: जी,
0: और मैं बोल रहा हूं समीर जी आप हैं
1: जी जी जी,
0: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ बीबी से पूछ के बताता हूँ?
1: जी जी, मैं तो कहूंगा मैं तो
0: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूँ,
1: बोल रहा हूँ,
0: इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूँ।
1: क्या बात है जी।
0: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट में मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा,
1: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा,
0: उंगली डाल के देखना पड़ेगा। जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुरादि जो हमारे पास जो करण है, उपकरण है, इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूं वो अनात्मा है।
1: ओके जी।
0: और ये सब के पीछे जो शक्ति है, जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं।
1: जी जी जी,
0: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
1: हाँ,
0: ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है। कोई से भी पूछे आप हैं क्या, वो कहेगा हाँ मैं
1: हूँ। करेक्ट, ब्यूटीफुल।
0: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर, आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
1: जी।
0: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं, तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
0: अच्छा, यहां दो चीज है, एक तो है विश्वास
1: जी।
0: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइबल बिलीफ, एक नॉन वेरीफाइबल बिलीफ।
1: वाओ, ओके।
0: अच्छा, ये जो धर्म का है, हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था, ऐसे मैं तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं, तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
1: जी जी।
0: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था? तो आप कहेंगे मैं मां के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था? तो आप अचानक से ऐसे पटाख से तो आप नहीं आए।
1: करेक्ट।
0: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के माँ के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
1: जी।
0: एप्पल जो है, जो सेब जो है, कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था। वो वक्त आने, वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीज से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया।
1: सुंदर।
0: और कुछ दिनों के बाद ये जो है, जो प्रकट हुआ, वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट। इसमें पुनर्जन्म जो है ना, विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
1: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों। कुछ अलग ही प्रस्पेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेंटिया भी।

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा, लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरे जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई। लोगों को ये कहता हूं कि मैं बचपन में 4 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था
0: जी,
1: और मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं अभी इस उम्र में व्हील चेयर या वॉकर लेके चलता हूँ
0: जी,
1: और 22-21 साल ऐसे उम्र में जब नौकरी की तलाश में जाता हूँ तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इसके लिए फिट नहीं हो। मैं तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था
0: जी,
1: किसी ने कहा आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाएंगे, तुम क्या बनोगे पायलट। मैं IAS बनना चाहता था, वो कहते नहीं IAS में विकलांग को हम शामिल नहीं करते। फिर की ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छे बैंक में बहुत बड़ी पोजीशन में मैं पहुंच गया
0: जी।
1: लेकिन उस मौके पर उस ऐसे हालात आए थे जब मैं 20-21 साल की उम्र का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया
0: जी,
1: ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे आपने मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ऐसा एक चैलेंज दिया मुझे
0: जी।
1: तभी जाके वो कहता है ना, ईश्वर अनुग्रह है मुझे गुरु मिले, और गुरु ने मेरी सोच, मेरी दृष्टि सब कुछ बदल दी। उसके बाद अभी जो है ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एडजस्ट हो गया है, अब ये अकोमोडेट हो गया। गाड़ी में जैसे डेंट है, समझिए गाड़ी में डेंट है, बस गाड़ी में डेंट है, गाड़ी तो चलती है ना। तो मेरी गाड़ी में डेंट है लेकिन काम अच्छी तरह करती है गाड़ी
0: जी।
1: तो जिंदगी में ऐसा मौका आया था जब मुझे बहुत गुस्सा आया, रिजेक्शन मिला मुझे
0: जी,
1: लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हाँ, वो कहते हैं ना, वो तमिल में कहते हैं आयो पावम, बेचारा।
0: ओके,
1: तो इसमें बहुत गुस्सा आया लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर अनुग्रह, मेरी पुण्य ऐसा हुआ कि ईश्वर अनुग्रह ऐसे बड़े संत महात्मा से मिले जिन्होंने मेरी सोच और विचारधारा बदल दी।
0: बहुत सुंदर भाई, वाह, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। उस प्रभाव को रेडिएट होते हुए हमारे पास आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लीजिए दोस्तों, एक भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं मोहन सर के पास। मैं हूं आपका दोस्त RJ समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई। रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं, धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता है हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट, और माय एक्सपेक्टेशन इज मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी।
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीज है, मत में दो चीजें, एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो अलग अलग है। अगर वो अलग ना होता तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: विचार करने की, फिर से बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1: जी सर, आवश्यकता है
0: बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वार्म अप हो रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी समझ भी खुल रही है। थोड़े से शब्द फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ऑल राइट, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में गहन विचार चाहिए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप सवाल, कई बार लोग बात पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खमखा में कंफ्यूज होने की कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं, कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए।
0: जी,
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं आप देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है कि क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है, हमारी गैलेक्सी इससे बाहर भी और कुछ है?
0: जी।
1: ये नक्षत्र लोग क्या है, वो सोच उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है। अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत होती है, इनसाइटफुल एनालिसिस। इसके अदृश्य शक्ति को देखने के लिए या समझने के लिए हमें एक सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है।
0: तो यार, जाहिर सी बात है, अभी मोहन सर ने जो एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया, ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है, उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को सुनकर समझकर मैं तो विश्वास से सारे मित्रों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि जी बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1 2 3 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें ये जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं
0: जी।
1: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले a+bd2 सीखना चाहिए। तो आप ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा
0: जी। जी,
1: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही, उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप 1 कर्म योग, स्टेप 2 उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं और श्रवण मनन शुरू कर दें, उनकी उनकी साथ सत्संग गुरु, क्योंकि ये जो चीज है अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, गुरु के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप्स एब्सोल्युटली जरूरत है, कर्म योग, उपासना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन
0: जी,
1: इसमें सब कुछ आ जाते हैं
0: जी। श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
1: नित्यासन, निधि ध्यासन ना, छोटा ध और फिर ध्या। अच्छा, निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्म विचार के ऊपर धी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
0: ओके ऑलराइट। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने 3 स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे, मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, एलजेब्रा को समझने के लिए पहले आप a+b2 तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एलजेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर, आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
1: हाँ, बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ, बाकी सब ईश्वर कृपा है।
0: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छा लगा, ईश्वर कृपा गुरु, ईश्वर अनुग्रह गुरु कृपा से मैं आपसे 2 शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जरा टेक्निकल है, जरा समझने में।
0: ऑफ कोर्स।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे प्यार, पॉलिटिक्स या वैलेंटाइंस की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी एक फॉन्ट की। जी हाँ, एक फॉन्ट जो हम सभी यूज करते हैं, और बिलीव कीजिए, ये कहानी आपको किसी थ्रिलर से कम नहीं लगने वाली। लेट 1920s का लंदन इमेजिन कीजिए। सुबह होती थी, चाय के साथ एक चीज पर भरोसा सब करते थे, द टाइम्स न्यूज़पेपर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी से भरा हुआ। अगर टाइम्स ने लिख दिया भाई, तो मतलब सच है। लेकिन एक आदमी था जो रोज पेपर तो पढ़ता था, बट इरिटेट हो जाता था। उसे आर्टिकल से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे हेडलाइन से भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉब्लम थी लेटर्स से, हाँ अक्षरों से। स्टैनले मॉरिसन, वो जर्नलिस्ट नहीं था, प्रिंटर भी नहीं था, आर्टिस्ट भी नहीं था, एटलीस्ट ड्रामेटिक पेंट स्प्लैटर्ड आर्टिस्ट टाइप तो नहीं ही था। वो था टाइपोग्राफिक थिंकर, ऐसा आदमी जो ए को देखकर उसका वेट मेजर कर लेता था, ई को देखकर उसकी स्पेसिंग जज कर लेता था, और कॉमा को देखकर उसकी डिग्निटी पर डिस्कस कर सकता था। जब मॉरिसन ने द टाइम्स को देखा, उसे एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा। पेपर मॉडर्न था, फास्ट प्रिंटिंग प्रेसेस पर छपता था, चीप न्यूज प्रिंट पर छपता था, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी होता था, लेकिन लेटर्स पुराने जमाने के, लाइंस क्लॉग थी, इंक स्प्रेड हो जाती थी, कॉलम स्पेस वेस्ट हो रहा था। आप सोचिए, 1920s में कोई आदमी न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज करे, वो भी पब्लिकली, और फिर क्या हुआ? आज के जमाने में होता तो शायद ट्विटर वॉर बन जाता, लेकिन उस दौर में क्लास थी। द टाइम्स ने कहा, अच्छा आपको प्रॉब्लम है, तो आइए सोल्यूशन दीजिए। इमेजिन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। मॉरिसन को इनवाइट किया गया, एक नया टाइप फेस डिजाइन करो, ऐसा जो स्मॉल साइज में भी क्लियर हो, चीप पेपर पर भी एलिगेंट लगे, फास्ट प्रिंटिंग सरवाइव कर सके और डिग्निटी भी न खोए। अब ये सिर्फ डिजाइन का काम तो नहीं था, ये इंजीनियरिंग भी था, साइकोलॉजी भी था, फिलॉसफी भी था। मॉरिसन रेनेसों एरा के लेटर फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, उनका बैलेंस, उनकी रीडेबिलिटी, उनकी सिमेट्री, लेकिन वो उन्हें कॉपी नहीं करते, वो उन्हें रिफाइन करते हैं, लेटर्स को थोड़ा नैरो करते हैं ताकि कॉलम में ज्यादा वर्ड्स आ सके, सेरिफ्स को शार्पन करते हैं ताकि इंक स्प्रेड होने पर भी क्लैरिटी बनी रहे, स्पेसिंग टाइटन करते हैं ताकि पेज क्लीन लगे। वो सिर्फ रिफाइन करते हैं और करते जाते हैं, हर स्ट्रोक कैलकुलेटेड, हर कर्व जस्टिफाइड। फिर आते हैं विक्टर लार्डेंट, टाइम्स के ड्राफ्ट्समैन। डिजाइन पेपर पर मेटल से आता है, लेटर्स को मेटल में कट किया जाता है, कास्ट किया जाता है, प्रेस पर टेस्ट किया जाता है, और फिर रिजेक्ट, फिर से ड्राइंग बोर्ड, फिर कास्ट, फिर प्रिंट, फिर रिजेक्ट, ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ओवर अगेन। क्यों? क्योंकि मेटल में जो सुंदर लगता था, प्रिंट में वो मेसी हो जाता था। ये वही स्टेज है जहां पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन मॉरिसन,
मॉरिसन परफेक्शनिस्ट था। और फिर आई अक्टूबर 1932 की एक सुबह, द टाइम्स का एक नया इशू निकला, सेम पेपर, सेम हेडलाइंस, सेम जर्नलिस्ट्स, लेकिन लेटर्स एकदम नए। पेज क्लीनर था, वर्ड्स क्लियरर थे, कॉलम्स शार्पर थे, और रीडर्स, उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। और दोस्तों, वही सबसे बड़ा ट्रायम्फ था। बेस्ट डिजाइन वो होता है जो चिल्ला चिल्ला कर अटेंशन नहीं सीख करे, वो क्वाइटली काम करता है। सालों बाद दुनिया को पता चला हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल टाइपफेस क्वाइटली लॉन्च हो चुका था। उसका नाम टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, वही फॉन्ट जिसमें हम सब ने स्कूल प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, वही फॉन्ट जिसमें रिज्यूम्स बनाए जाते हैं, वही जिसमें लव लेटर्स टाइप हुए हैं, और वही जिसमें रेजिग्नेशन लेटर्स भी टाइप किए गए हैं। और शायद इस वक्त मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो सभी उसी फॉन्ट में है। कभी सोचा है, एक फॉन्ट ने दुनिया का टोन डिफाइन किया, अथॉरिटी का लुक डिसाइड किया, सीरियसनेस को शेप किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पर्सनालिटी दी, और लोगों को पता भी नहीं चला। इस कहानी का मॉरल, कभी कभी सबसे पावरफुल चीजें वो होती हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं होती, जो क्वाइटली काम करती हैं, जो क्लैरिटी देती हैं, जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, और आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते। तो अगली बार जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करें या उसे ओपन करें और डिफॉल्ट फॉन्ट दिखे, तो जरा रिस्पेक्ट से देखिए। हो सकता है वो सिर्फ लेटर्स ना हो, हो सकता है वो डिजाइन की दुनिया का एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो। सोच के देखिए। लिखे जो

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल डिलीवरी इतनी फास्ट हो गई है कि कभी कभी लगता है घर का दरवाजा खोलने से पहले ही राइडर बाहर खड़ा होगा। सर, आपने सोचा भी था ऑर्डर करने का? हम निकल पड़े। इंट्यूशन लेवल माँ से भी तेज।

दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं जापान की कंट्री साइड। विंडोज के बाहर ग्रीनरी ब्लर हो रही है, सिस्टम परफेक्ट, टाइमिंग परफेक्ट, सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। फिर अचानक ट्रेन रुकती है, डोर्स खुलते हैं, आप उतरते हैं और सामने ना कोई शहर, ना कोई मार्केट, ना कोई रोड, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक नदी, एक जंगल और ऊपर खुला आसमान। ये है जापान की सिरोमुराशी स्टेशन की कहानी। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कहीं नहीं लेके जाता और जहां आप पैदल पहुंच भी नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रेन से ही आ सकते हैं और ट्रेन से ही वापस जा सकते हैं। क्यों बनाया गया होगा ऐसा स्टेशन? प्रॉफिट के लिए? नहीं। टूरिज्म के लिए? नहीं। एडवर्टाइजमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। ये स्टेशन बना सिर्फ एक वजह से, ताकि लोग रुक सके। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर एक चीज मेजर होती है। कितना प्रोडक्टिव हो, कितना कमा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो जीवन में। लाइफ एक डैशबोर्ड बन चुकी है, मीट्रिक्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। और उस दौर में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्वाइटली खड़ा है, जैसे कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। सोचिए, ट्रेन आती है, आप उतरते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड फ्लैश नहीं कर रहा, कोई एड नहीं कह रहा कि ये खरीदो वो खरीदो, और कोई नोटिफिकेशन नहीं कह रहा रिप्लाई करो भाई रिप्लाई करो। बस हवा है, पानी की हल्की सी आवाज है, पेड़ों का सांस लेना है, और आप, बस आप। ये स्टेशन ये याद दिलाता है कि कभी कभी एग्जिस्टेंस खुद ही इनफ होता है। जापान को हम एफिशिएंसी के लिए जानते हैं। बुलेट ट्रेन्स सेकंड्स की एक्यूरेसी से चलती हैं, सिस्टम्स हैं फ्लॉलेस और डिसिप्लिन है अनमैच्ड। लेकिन उसी प्रिसिशन के नीचे एक सॉफ्टनेस भी है। जापान में कॉन्सेप्ट है मोनो नो अवेयर। इसका मतलब है चीजों के बीत जाने के बाद जो हल्की सी उदासी रह जाती है उसका एहसास। ये समझना कि ब्यूटी परमानेंट होती है और शायद इसीलिए प्रेशियस होती है, यही इसका सार है। जैसे चेरी ब्लॉसम जब पेड़ से गिरता है तो वो गिरना उसकी खूबसूरती है, सिरोमुराशी स्टेशन भी वैसा ही है। आप वहां हमेशा नहीं रह सकते, ट्रेन वापस आएगी, डोर्स बंद हो जाएंगे, लाइफ फिर से चल पड़ेगी। लेकिन उन कुछ मिनटों के लिए आप बेंच पर बैठकर बस देख सकते हैं नदी का फ्लो, हवा का मूवमेंट, आसमान का वो नीला रंग, और शायद अपने अंदर की नॉइस भी धीरे धीरे कम होती हुई महसूस होती है। सोचिए, एक रेलवे कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ऐसा स्टेशन बनाएंगे जो उन्हें रिच नहीं बनाएगा, जो उन्हें आमदनी नहीं देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये डिसीजन रहा कि ब्यूटी मैटर करती है, रुकना मैटर करता है, और साइलेंस, शांति सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज के दौर में जब हर जगह हसी कल्चर का प्रेशर है, जल्दी चलो, ज्यादा कमाओ, थोड़ा सो, उस सभी के बीच में ये स्टेशन एक साइलेंट रिबेलियन है। ये कह रहा है कि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, कभी कभी प्लेटफॉर्म भी होती है। हम सब अपनी अपनी ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं, करियर की ट्रेन, रिलेशनशिप की ट्रेन, सोशल एक्सपेक्टेशंस की ट्रेन। कभी सोचा है आपने लास्ट टाइम कब बिना किसी रीजन के पॉज लिया था? कब बिना फोटो क्लिक किए सनसेट देखा था? कब बिना स्टोरी अपलोड किए कॉफी पी थी? सिरोमुराशी स्टेशन कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, वो एक फिलॉसफी है। वो याद दिलाता है कि हम सिर्फ मशीन्स नहीं हैं,
हम सब प्रोडक्टिविटी के यूनिट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान को कभी कभी बस रहना होता है, बस होना होता है। शायद हमें जापान जाने की जरूरत नहीं, शायद हमें अपनी ही लाइफ में छोटे छोटे नो डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत है। 5 मिनट बिना फोन के, 10 मिनट बिना गोल के, थोड़ा वक्त बिना आउटकम के, क्योंकि आखिर में ब्यूटी का पर्पस सिर्फ देखा जाना होता है और एग्जिस्टेंस का सेलिब्रेशन सिर्फ महसूस किया जाना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ की ट्रेन भाग रही हो, कभी कभी एक ऐसा स्टेशन ढूंढ लीजिए जो कहीं नहीं जाता, हो सकता है वही आपको वापस खुद तक ले आए। जरा रुक के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पुराने बाजार में दुकानदार कहता था, अरे आज थके हुए लग रहे हैं, चाय पिला देता हूँ, पियेंगे? आज ऐप बोलता है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बिहेवियर यू मे ऑल्सो लाइक एंग्जाइटी।

दोस्तों जरा आंखें बंद कीजिए। सुबह का वक्त है, पुराने शहर की तंग सी गली है, पत्थर की दीवारें हैं, हवा में मसालों की खुशबू है, दूर कहीं चाय उबल रही है और आज दुकान के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखी है, बस एक कुर्सी, ना कोई बैनर, ना कोई डिस्काउंट बोर्ड, ना कोई फ्लैशी डिस्प्ले, सिर्फ एक कुर्सी। ये कहानी है पुराने सूख की, पुराने बाजार की, जहां हर सुबह दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बाहर एक कुर्सी रख देते थे। वो कुर्सी फर्नीचर कम सिग्नल ज्यादा होती थी। अगर कुर्सी बाहर रखी है इसका मतलब है आज अभी तक कोई सेल नहीं हुई। अगर कुर्सी अंदर चली गई तो समझ जाइए दिन शुरू हो चुका है, पहली बोनी हो चुकी है, पहला ग्राहक आ चुका है। अब सोचिए, एक नया कस्टमर बाजार में आता है, एक दुकानदार उसे देखता है, लेकिन वो सिर्फ कस्टमर को नहीं देखता, वो दूसरी दुकानें भी देखता है, कौन सी कुर्सी अब तक बाहर है। अगर उसे दिखता है कि किसी और दुकान के बाहर कुर्सी अभी भी बाहर ही वेट कर रही है, तो हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, उधर चले जाइए साहब, उनके पास जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा। सोचिए, अपना कस्टमर किसी और के पास भेजना, आज के जमाने में तो ये इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन वहां सूख में ये बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं थी, ये एक कम्युनिटी की बात थी, ये सर्वाइवल का शायद एक शेयर्ड मॉडल था। वहां कंपटीशन का मतलब था साथ साथ जीतना, आउटशाइन करना नहीं, अपलिफ्ट करना। सूख में प्रोस्पेरिटी एक रेस नहीं थी, एक जर्नी थी सभी के साथ। अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। आज हम ऐप खोलते हैं, एक क्लिक, एक ऑर्डर, फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, 30 मिनट्स गारंटी, बेस्ट प्राइस गारंटी। कन्वीनियंस के नाम पर हम सभी ने स्पीड को वर्शिप करना एकदम शुरू कर दिया है, लेकिन इस स्पीड के पीछे क्या है? डिलीवरी राइडर जो ट्रैफिक में जान रिस्क पर डालता है,

वो वर्कर जो मिनिमम वेज पर लॉन्ग शिफ्ट्स करता है, छोटी दुकान जो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है। एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि कौन दिखेगा कौन नहीं। वेंचर कैपिटल डिसाइड करता है कि किसकी ग्रोथ होगी, किसकी दुकान बंद होगी। और धीरे धीरे वो कुर्सियां गायब हो गई, वो हल्की सी मुस्कान, वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, वो बिलोंगिंग का एहसास, वो बातचीत का मजा। कॉमर्स का ह्यूमन फैब्रिक धीरे धीरे पतला हो गया। आज हम सक्सेस को मेजर करते हैं स्केल से, स्पीड से, फंडिंग राउंड से, लेकिन पुराने जमाने के बाजार में सक्सेस मेजर होती थी रिश्तों से। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप लोकल दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपका नाम जानता है, आपके घर का एरिया जानता है, कभी कभी आपके बच्चों के एग्जाम्स भी याद रखता है। ऑनलाइन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आते हैं। वो सिर्फ एक ऐप है और वो सिर्फ डेटा दिखाती है। सूख की कुर्सी एक सिंबल थी कि आज मेरी बारी नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल आएगी, पर मेरे पड़ोसी की आज आ जाए, ये भी एक खुशी की बात ही है मेरे लिए। क्या हमने वो सोच खो दी है? ये कहानी सिर्फ बाजार की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है। हम सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह, करियर की, रिलेशनशिप की, एम्बिशंस की। कभी कभी हमारी कुर्सी बाहर रह जाती है, दिन शुरू ही नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती। और तब घर का कोई पड़ोसी हल्की सी मुस्कान से अगर ये कह दे कि साथ हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्या बात होगी? कभी सोचा है? शायद दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए। शायद असली वेल्थ कभी गुड्स में थी ही नहीं, वो हाथों में थी जो उन्हें बेचते थे, वो दिलों में थी जो कस्टमर को गाइड करते थे, वो इनविजिबल टाइज में थी जो एक कम्युनिटी को बांध कर रखती थी। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी छोटी दुकान के पास से गुजरें या किसी लोकल वेंडर से खरीदारी करें, एक पल के लिए कुर्सी को याद कीजिए, वो कुर्सी जो कह रही थी हम साथ जीतते हैं। और शायद हम सबको अपनी जिंदगी के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखनी ही चाहिए, क्योंकि बाजार सिर्फ सामान से नहीं, इंसान से बनता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल तो ऐप इतनी स्मार्ट हो गई है कि कल मैंने बस अपना फोन उठाया ही था कि ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दिया, मैम आप उदास लग रही हैं, आइसक्रीम भेज दें। और नीचे छोटा सा लिखा था, डिलीवरी पार्टनर ऑलरेडी इमोशनल सपोर्ट के साथ निकल चुका है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है बॉलीवुड का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम मिलेंगे उन लोगों से जो पर्दे पर दिखते नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नाम जिनका काम है सही चेहरे को सही किरदार तक पहुंचाना, कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया। समीर जी ने फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, एड्स और शॉर्ट फिल्म्स तक में काम किया है। Z5, अमेजन प्रोजेक्ट से लेकर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स और डिजिटल कैंपेन्स तक इन्होंने न जाने कितने टैलेंट्स को स्क्रीन तक पहुंचाया है। आज हम जानेंगे कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, न्यू टैलेंट कैसे डिस्कवर होता है, राज कपूर के दौर से लेकर OTT रात तक कास्टिंग कैसे बदली है, और वो सवाल जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते हैं, कास्टिंग काउच की रियलिटी क्या है। तो तैयार हो जाइए एक बिहाइंड द सीन्स जर्नी के लिए, जहां हम समझेंगे फिल्मों की दुनिया का वो पहलू जो दिखता कम है लेकिन बनाता बहुत कुछ है। प्लीज वेलकम समीर पहाड़िया जी।
2: थैंक यू वेरी मच सर, और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और सभी जितने भी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। प्लीज सर कंटिन्यू।
1: तो समीर जी, बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। बचपन कहाँ बीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी जिंदगी की, कुछ बताइए उसके बारे में।
2: तो सर ऐसा है कि मेरी जो बचपन की शुरुआत है वो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसमें टीचर की फैमिली है। मेरे पिताजी बेसिकली रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट के, तो उनसे वो बचपन से ही हमें जो संस्कार और जो थ्योरी है ना, जो एक जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की, वो उनसे मिली है। पूरा घर का माहौल भी वही है कि मेरे बड़े भैया हैं जगदीश पाड़िया जी, वो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे छोटे हैं वो टीचर हैं, तो बेसिकली मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, और मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है, तो वही वाली बात है कि जब 3 डेट आई थी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करते हैं, तो वो चीज मैंने एग्जीक्यूट की, और वो सिलसिला इच्छा का सिलसिला था, और वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा कंटिन्यू हो गया, तो अभी वो सिलसिला बरकरार है।
1: तो आप ये बताइए कि बचपन से ही फिल्म्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था, ये पैशन बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हुई?
2: बचपन में सर मैं डांस करता था, और मेरा ये मानना था, हाँ ये मानना था कि एक्टर जो होता है ना, जो फिल्म में पर्दे पे हम हीरो को देखते थे, उसकी लैंग्वेज मुझे ये पता थी कि डांस जो करता है वो हीरो होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फिर मुझे पता चला कि एक थिएटर ग्रुप है, थिएटर होता है, प्लेज होते हैं, और ये परफॉर्मिंग आर्ट में एक्टिंग बहुत मायने रखती है, सिर्फ डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बनते हो। तो फिर मैंने जयपुर के रविंद्र मंच है वहां पे एक नाट्य कार्यशाला हो रही थी Under 20 age की, तो मैंने ज्वाइन की थी, वहां से मुझे पता चला कि नहीं यार, डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ईजी चीज लगती है सर देखने में एक्टिंग, और सबसे टफ वही होती है। तो वही है कि पैशन तो बचपन से मुझे डांस के थ्रू था, कि आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो मैं डांस बहुत अच्छा करता था बचपन से. तो उस बिहाव पे मेरा वो इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है. पता था नहीं कि क्या होता है कैसे होता है चीजें, ठीक है. धीमे धीमे वो है कि थिएटर में गया, थिएटर से बारीकियां सीखने की कोशिश की और फिर पता चला कि एक्टिंग क्या चीज होती है और फिर धीमे धीमे एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया.
1: तो आपकी मतलब स्टेज से भी आपका जुड़ाव रहा है जयपुर में, इसका तो ये मतलब था. तो आप पुराने लोग हैं, सरताज माथुर, ईश्वर दत्त और इन सबको जानते होंगे.
2: बिल्कुल, मैं पर्सनली तो जानता ही हूँ. बाकी का साबिर खान सर है जयपुर से.
1: अच्छा, हाँ साबिर खान.
2: हाँ उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली है. वो एक वर्कशॉप थी, फिर उसमें प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप थी, वो मैंने ज्वाइन किया. फिर काफी चीजें सीखी वहां से, फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखा. इवन जो साबिर सर हैं, मैं उनको हमेशा ये थैंक यू बोलता हूँ कि जो कास्टिंग का भी जो प्रोसेस है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थिएटर के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है कि वो अच्छे एक्टर की बजाय ना अच्छे कैरेक्टर ढूंढते हैं किसी एक्टर को, ठीक है. तो वो ही एक्चुअली कास्टिंग का प्रोसेस होता है. तो मैंने जब मैं थिएटर कर रहा था उसी दरमियान मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर हो. उस कैरेक्टर के लिए बेहतरीन एक्टर कौन हो सकता है ना, जिसमें वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा फिट बैठता हो. तो वही कास्टिंग की बेसिकली एक लीनियर लाइन जो होती है ना, उसमें हम लोग एक्टर कास्ट नहीं करते हैं अच्छे, हम अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते हैं.
1: अच्छा.
2: तो वो मुझे वहां से वो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं आज धीमे धीमे मैं अपने प्रोसेस में वर्कआउट कर रहा हूँ. तो इसीलिए थिएटर मेरे लिए जिंदगी में मतलब एक बेस जो है ना, वो थिएटर ही रहा है और उसी के बिहाफ पे इतना कॉन्फिडेंस है और जो चीजें चल रही है प्रोफेशनली वो उसी बिहाफ पे है.
1: नहीं, ये फायदा आपने बहुत अच्छा बताया. तो अच्छा, ये बताइए मुंबई आप कैसे पहुंचे? क्या आप भी एक एक्टर बनने का सपना लेकर बॉम्बे आए थे या शुरुआत से ही था कि भाई बिहाइंड द कैमरा ही मुझे काम करना है, यही मेरा इंटरेस्ट है? ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी बॉम्बे वाली?
2: जबकि मैं ये बताना चाहूंगा सर कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से कैमरा एक्टिंग अकेडमी है. कि जो कैमरे एक्टिंग की अकेडमी में जो सिखाते है ना, वो आप कास्टिंग की प्रोसेस में सीखते हो. क्योंकि हम हर दिन 50 लोगों के ऑडिशंस देखते हैं, अच्छे एक्टर के, बुरे एक्टर के, नए एक्टर के, पुराने एक्टर के, बड़े एक्टर के, हर तरीके के लोगों के 50 वेरिएशन देखते हैं हम लोग.
1: अच्छा.
2: हम लोग उस जजमेंट पे होते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता है. जो बेहतर एक्टर है उनसे भी हम ये बात करते हैं कि यार और बेहतर हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वो जो एक एक्टिंग की समझ है ना कि कैमरा क्या क्या चाहता है, वो आपको समझ में आ जाती है. और जब वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है कि कैमरा क्या चाहता है, तो जब आप खुद एज एन एक्टर काम करते हो ना, तो वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो उस समय तक झाल चुके होते हो उस प्रोसेस में कास्टिंग की, अदरवाइज आपको ये पता होता है कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है. मैं जो चाह रहा हूं सिर्फ वही नहीं हो सकता. डायरेक्टर क्या चाहता है, उसका पैटर्न क्या है उस स्टोरी का, वो कैरेक्टर की डिमांड क्या है, मेरा वॉइस टेक्सचर कैसा रहेगा, मेरी लैंग्वेज कैसी रहेगी, मेरी क्लास कैसा रहेगा, वो सारी नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे कास्टिंग प्रोसेस में काम करते करते आई. और मुझे ये लगता है कि मैंने पैरेलल एज एन एक्टर भी सर काम किया है, तो मुझे उस चीज में बड़ी हेल्प मिली है. कि शुरुआती दौर था जब मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ना थिएटर में, तो मुझे बड़ा डर रहता था कि कैमरे के सामने एक लाइन बोलने में बहुत डर लगता था. लेकिन जब मैं कास्टिंग की प्रोसेस में बढ़ता गया, मैं कई लोगों के ऑडिशंस ले रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ. फिर क्योंकि जब आप लोगों को बता रहे होते हो तो कहीं ना कहीं इनिशियली वो आपके अंदर भी वो चीज आती है कि आपको भी वो एग्जीक्यूट करना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के लिए है वो थ्योरी.
1: सही बात.
2: ठीक है. तो फिर उस वजह से मैं एक्टिंग भी कहीं ना कहीं और बेहतर कर पाया जितना मैं नहीं कर सकता था पहले. जस्ट बिकॉज ऑफ मैं पहले थिएटर से जुड़ा, फिर उसको मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी कास्टिंग की प्रोसेस में, एक्टिंग की प्रोसेस में, और कास्टिंग की प्रोसेस को फिर मैंने एग्जीक्यूट किया एक्टिंग में. तो मेरे लिए चार चीजें और बेहतर हो गई.
1: भाई मेरे ख्याल में तो आपने बहुत ही गहरी बात बताई है और बहुत ही मजेदार बात बताई है और हमें बड़ा मजा आया सुन के। दूसरा मुझे ये लगा है कि आपका ये मतलब है कि जो कास्टिंग का काम है और एक्टिंग का काम है दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ये सप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
2: डेफिनेटली
1: एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी खूबसूरत बात के पे समीर जी रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं दोनों के सप्लीमेंट के नाम पे और हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: तो वेलकम बैक समीर जी। तो आप ये बताइए कि आपका ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको लगा कि भाई नाउ आई हैव बिकम ऑफिशियली कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसा पहला काम कौन सा किया था?
1: सर मेरा जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको शुरुआत में ही बोला था मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ कुछ चीजों में, तो मेरा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो टर्टल फिल्म थी जिसको 2019 में नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरा एज ए डेब्यू कास्टिंग डायरेक्टर था, डेब्यू हुआ था उससे।
0: अच्छा।
1: और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि उसमें डायरेक्टर का भी डेब्यू था, प्रोड्यूसर का भी डेब्यू था, और कितने एक्टर्स थे उनका भी डेब्यू था। और संजय मिश्रा सर थे वो मेन लीड में थे।
0: अच्छा,
1: और अभी वो अमेजॉन प्राइम पे है वो, और Z5 दोनों पे वो रिलीज हो चुकी है वो फिल्म। और बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत फिल्म है सर। राजस्थान में ही हमने शूट किया था, जो जल संकट है ना जो, और उसमें ऐसा बताया गया था कि विश्व में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं जल की वजह से होगा। तो जो पानी का योगदान क्या है आपकी लाइफ में, लोगों की जनरल लाइफ में, उसको लेकर के, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो फिल्म थी। तो मैं, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो फिल्म देखें और प्लीज रिव्यू कीजिए कि आपको जरूर मजा आएगा देख करके।
0: और संजय मिश्रा जी तो बहुत ही आला दर्जे के एक्टर भी हैं सर, वो मैं भी बहुत इम्प्रेस।
1: कमाल।
0: तो चलिए इसी बात पे, संजय मिश्रा जी की बात पे और जल संकट की बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ समीश जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा अब हम आपके मेन मुद्दे पर आते हैं और हम रुख थोड़ा सा आपके कास्टिंग डायरेक्टर के रोल पे कर लेते हैं। अब हमारे लिसनर्स के लिए सिंपल वर्ड्स में ये बताइए कि द कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए और फिर हम आपसे दो तीन सवाल इसी के बारे में पूछेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में।
1: तो बेसिकली सर, कास्टिंग का प्रोसेस कुछ समय पहले कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट ज्यादा उजागर हुई है। आई थिंक 15-20 साल पहले। उससे पहले कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो एक्टर्स को कास्ट करते थे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि 90s की जितनी भी फिल्में थी उसमें कैरेक्टर्स में जो एक्टर्स थे बड़े सिमिलर मिलते थे आपको, ठीक है? कि अगर जॉनी लीवर एक दोस्त बना हुआ है तो जॉनी लीवर दोस्त बना रहेगा हमेशा, ठीक है? उसी तरीके से, मतलब जॉनी लीवर सर तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन और भी कई कैरेक्टर थे जो आपको अधिकतर फिल्मों में बड़ी सिमिलर से मिलेंगे कि ये भी है, ये भी है,
0: वकील और जज तो खास लोग ही बनते थे।
1: हाँ, फिक्स था कि ये तो पंडित ये बनेगा, ये वकील बनेगा और ये पुलिस वाला बनेगा, ये नेगेटिव करेगा। कास्टिंग जैसे ही प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हुई कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन लोगों ने नया टैलेंट सर्च करने की शुरुआत कर दी थी कि अब आप देखेंगे कि अगर 10 फिल्म में 10 कैरेक्टर हैं सिमिलर, तो 10 में एक्टर आपको मोस्टली वेरिएशन में मिलेंगे और उन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन जो भी है ना, वो भी बड़ा ही वेरिएट होने को मिलेगा। तो हम लोग यही करते हैं कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम लोगों को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट है, हम लोग उसको रीड आउट करते हैं, हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में, उस स्क्रिप्ट के नरेशन हम लोग सुनते हैं, तो उस कैरेक्टर को लेकर के हम लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं क्रिएटिवली कि क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो। कई बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये शायद पतला हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, ये काला हो सकता है, ये गोरा हो सकता है, ठीक है? लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्टक नहीं होते हैं कि नहीं नहीं ये काला ही होगा, गोरा भी हो सकता। तो हम लोग एक तरीके से सर वैसा है कि होता है ना कि पतंग जब जाती है ना तो माजा फेंकते हैं, तो वो माजा कौन सी पतंग में आ जाए, वो कट जाए ना, वो प्रोसेस है एक्चुअली। कि हम लोग बहुत फिक्स नहीं होते हैं कि नहीं नहीं यही एक्टर कर लेगा।
0: ओके ओके ओके,
1: ठीक है। तो हम लोग एक कैरेक्टराइजेशन एक डायरेक्टर के थ्रू हम लोग क्रिएट सुनते हैं, फिर हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर हम लोग एक्टर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि अच्छे एक्टर कौन है और इस डायरेक्टली लुक में पर्सनैलिटी में कौन है, फिर हम उन दोनों का कॉम्बो वर्जन देखते हैं कि किसके ऑडिशंस ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो एट द एंड जो डिसीजन करते हैं ना हम लोग सर, वो करते हैं ऑडिशन पे। कि कई बार हम अपने आप को, हमारी मेमोरी और हमारा जो डिसीजन है उसको हम लोग हमेशा साइड में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो जो ऑडिशन में होगा ना वो शाश्वत सत्य है। हम जो सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है कि बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर उसने अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ऑडिशन अच्छे नहीं है, तो हम लोग उसको साइड कर देते कि नहीं नहीं यार, इस कैरेक्टर के ये अच्छे एक्टर हो सकते हैं लेकिन इस कैरेक्टर के लिए। पहली लाइन जो बोली थी ना कि हम लोग अच्छे एक्टर नहीं, हम लोग अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते।
0: तो ये कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन भी आप ही लोग कंडक्ट करते हो, ये ऑडिशन का प्रोसेस आमतौर पर कैसे चलता है, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे?
1: सर शुरुआत में तो जब डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था तो हम लोग मोस्टली ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, जो लोगों ने ऑफिस साइज बना रखी थी कास्टिंग कंपनी ने या प्रोडक्शन हाउस ने, तो लोग आ करके ऑडिशंस देते थे।
0: अच्छा।
1: और मुझे अभी तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफलाइन ऑडिशन ही लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली एक्टर से इंटरेक्ट होते हैं।
0: सही।
1: और जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस समझ को रखते हैं उस प्रोसेस में, तो हम लोग एक्टर को वो प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं डायरेक्टली कि सर डायरेक्टर क्या चाहता है, ठीक है? फिर हम लोग वहां से पूछते हैं कि एक्टर से कि आप क्या चाहते हो। तो जो डायरेक्टर और एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ना, कि डायरेक्टर की वॉन्ट क्या है और एक्टर अपना क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में रखते हैं और फिर एक बेहतर ऑडिशन की तलाश में होते हैं कि वो ऑडिशन कितना खूबसूरत हो सकता है क्रिएटिवली।
0: वैसे मोटा मोटा तो आपने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब आप किसी रोल के लिए एक्टर चुनते हैं तो किन खास चीजों पर ध्यान देते हैं? लुक्स है, एक्टिंग स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, स्क्रीन प्रेजेंस है? आपने वैसे तो मोटा मोटा बताया ही है, लेकिन अगर यूं स्पेसिफिकली पूछे तो किन चीजों पर खास ध्यान देते हैं?
1: सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कैमरा फ्रेंडली हो एक्टर, अगर वो कैमरे के लिए काम कर रहा है।
0: ओके।
1: और उसकी लैंग्वेज, जो कैरेक्टर की डिमांड क्या है ना सर, उस पर डिपेंड करता है कि अगर किसी गांव का कैरेक्टर है तो उसकी लैंग्वेज बहुत बेसिक होगी, वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो कैरेक्टर किसी सिटी का है तो उसकी लैंग्वेज जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो एक सिटी के कैरेक्टर में होती है। तो मैटर ये करता है कि कई एक्टर को, मैं ये बात बता दूं सर पर्सनैलिटी को ही लेके, कि कई एक्टर बहुत ही बेसिक और बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब वो ऑडिशंस देते हैं या कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, वो बहुत क्लासी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा प्रोसेस बता रहा हूँ सर, कि मैं कभी डायरेक्टली आंखों पर बहुत भरोसा नहीं करता। अच्छा। कई बार हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन जरूर होता है कि यार ये शायद उस कैरेक्टर में जा रहा है बढ़िया।
0: अच्छा।
1: फिर कैरेक्टर में वो जा रहा होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर करेगा। फिर हम लोग उस कैरेक्टर में फर्स्ट लुक से हम लोग इंस्पायर होके कि यार ये इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसका ऑडिशन करते हैं, फिर वो ऑडिशन में वो बेहतर करता है।
0: ओके।
1: तो हमारे लिए बेहतर एक्टर है। लेकिन आपको मैं वन लाइन में बोल दूं कि लुक बहुत मायने रखता है जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो ना। तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो आपका लुक होता है कि उस कैरेक्टर के नियर बाई आप कितना जा रहे हो।
0: हाँ, वो गांव वाला लुक है तो उसकी चेहरा अगर मोरा कुछ गांव वाला टाइप लगता है तो आपको प्रेफर करोगे आप इसके
1: लिए। देखिए ना, अभी जैसे सास बहू फ्लेमिंगो मैंने राजस्थान की कास्टिंग किया था, आर्या के तीनों सीजन मैंने राजस्थान की कास्टिंग की थी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक चेहरे कास्ट किए हैं, जो जयपुर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, जिनका फेस उस तरीके से वो ऑथेंटिक दिखता है कि वो मतलब रफनेस है चेहरे के अंदर। रेगिस्तान के एरिया में जो चेहरे होते हैं, कई लोग फेयर हैं, लेकिन आप देखना कि जो रेगिस्तान के आसपास जो फेयर कलर के भी लोग रहते हैं, उनकी उनके चेहरे हैं वो बड़ी ऐसे दबे हुए होते हैं, उनके गाल बहुत ज्यादा फूले हुए और वो कलर उनका गोरा होगा, लेकिन वो थोड़े थोड़े डॉट्स से बने हुए, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती है ना कि आपका गोरा चेहरा भी है ना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो एक लुक हो गया कि अगर किसी एक्टर का लुक इस तरीके का है ना, तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी ये चाहता है कि यार मुझे ऑथेंटिक मिल रहा है तो मैं मेकअप वाले को क्यों परेशान करूं।
0: ओके।
1: तो जो कास्टिंग कहीं ना कहीं जो बेहतर किया है ना कास्टिंग की प्रोसेस ने सिनेमा में, वो किया है ऑथेंटिसिटी को।
0: ऑथेंटिसिटी
1: हम लोग डायरेक्टर को ऑथेंटिक लोग पहुंचाते हैं कि सर आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लुक पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसा का वैसा ही कैरेक्टर दे रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा एक्टर है।
0: यार ये तो बहुत ही गहरी बात बता रहे हो आप, मतलब ये सर मैं आगे और भी क्वेश्चन है लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अच्छा ये बताइए कि आप जैसे न्यू कमर लेना है या एस्टेब्लिश्ड एक्टर लेना है, ये हालांकि आपने मोटा मोटा पहले भी बताया है, लेकिन इसमें कोई खास वो है कि
1: सर कुछ समय ऐसा होता है कि जब ओटीटी या कोई सिनेमा की बात आती है ना, तो एक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर वो बजट लगा रहा है तो उसका बजट रिटर्न होना चाहिए।
0: ठीक है।
1: तो इस वजह से वो उसकी एक थ्योरी होती है कि अगर मैं इसको लूंगा तो मेरा बजट रिटर्न हो जाएगा, इसको लूंगा तो इससे बजट रिटर्न नहीं होगा। तो उस प्रोसेस में जरूर ये होता है कि हम लोग नॉन फेस जो एक्टर हैं उनको काउंट करते हैं, क्योंकि नॉन फेस होने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि वो बेहतरीन एक्टर है। क्योंकि न्यू कमर और जो नॉन फेस हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो भी कभी न्यू कमर हो रखे होते हैं।
0: हाँ सही बात है।
1: ठीक है। तो ये सिर्फ इस थ्योरी के लिए, मार्केटिंग के बिहा पे कहीं ना कहीं नॉन फेस बहुत मैटर करता है सर। और लेकिन कई बार कई जो डायरेक्टर हैं, कई प्रोडक्शन हाउस हैं, जिनका स्पेसिफिक होता है कि यार मुझे नया एक्टर लेना है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा हो। हाँ, जैसे अगर आपने ये स्लमडॉग मिलेनियर में देखे होंगे, आपने सारे नए एक्टर मतलब शुरुआत, उससे पहले आपने बड़े पर्दे पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर में नहीं देखा होगा जो लीड कर रहे थे।

0: है ना, तो लोग और ज्यादा प्यार करते हैं उसको कि यार नया लड़का है यार, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग की थी इसने, जो विक्रम मैसी है उसने वो वाली पिक्चर,
0: विक्रम मैसी, यस यस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो शुरुआती दौर से, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से वर्किंग में हूं, तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो न्यू फेस, शुरुआत में उनका काम बहुत बेहतरीन रहा है सर। हाँ, उनको लोगों ने प्लेटफॉर्म उन्हें बहुत लेट मिला है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे नवाज सर हैं, इरफान सर हैं, हाँ, ये लोग सर शुरुआत से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात। हाँ, पहली लोग तो, बहुत अच्छी थी,
0: हाँ लोग तो बाद में बोलने लगे हैं कि अरे यार देखो इरफान साहब अब बढ़िया काम करते हैं। अरे वो भैया वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे,
1: बिल्कुल सही,
0: लोगों ने अब जान पाए।
1: चलिए तो इरफान सर के नाम पे आ गया, तो कोई इरफान सर की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं यहाँ अपन रुक के,
0: ये तो बहुत खूबसूरत रहेगा।
1: बहुत अच्छा रहेगा, चलिए।

0: अब थोड़ा सा पुराने दौर की तरफ चलते हैं। आपने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल और आपने ऑथेंटिसिटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता दी। तो अब ये बताइए, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार का जो दौर था और वहां से लेकर आज के ओटीटी इरा तक, कास्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है उस जमाने से, बताइए इसके बारे में।
1: सर, एक तो क्या है कि जो बदलाव जितने भी हुए हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। सिनेमा वही रहा है, मतलब फिल्म मेकिंग की प्रोसेस वही रही है कि कितना आप चीजों को खूबसूरत प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग 1980s की फिल्में देखते हैं तो आज भी वो बहुत प्यारी लगती है, मतलब लगता है कि यार ये बिल्कुल कितने करीब है, जबकि टेक्नोलॉजी उतनी उस वक्त बेहतर नहीं
0: नहीं
1: थी
0: थी
1: जितनी आज है,
0: सही।
1: लेकिन ऑथेंटिक। हाँ, तो फिल्म मेकिंग में सर सिर्फ यही है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है ना, तो मुझे कई बार उस तरीके से डिफरेंस नहीं दिखता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस दिखता है, वरना ऑथेंटिसिटी तो सर पहले और ज्यादा बेहतर मिलती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोग थोड़ा सा उसको सुविधा मान लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पहले लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि उन्हें पता है कि नेगेटिव रील है, अगर वो शूट करेंगे तो आपका टेक बेवजह नहीं जाना चाहिए, तो बेस्ट पहले से ही वो प्री रिहर्सल उनकी बेहतर होती थी। अब शायद ऐसा हो गया है कि अब उन्हें पता है कि यार मेमोरी कार्ड ही तो है, ठीक
0: अच्छा,
1: है, तो वो डिलीट हो जाएगा डेटा, तो
0: राइट
1: एक और टेक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ना एक ये है कि इरिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है, लेकिन ये भी है कि सुधार करने का मौका भी मिल गया है, कि एक चीज का फायदा होता है दूसरी का घाटा भी होता है सर, तो ये है कि एक घाटा ही।
0: हाँ, कास्टिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया है ये बताइए।
1: सर कास्टिंग प्रोसेस में तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस ही कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गई है कि अब हम लोग मुंबई में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया से हम लोग एक्टर्स ले सकते हैं, कि व्हाट्सएप पे हम लोगों को कनेक्ट करते हैं कि भाई आप अपना इंट्रो भेजिए, अपना ऑडिशन वीडियो भेजिए, उनको ऑन कॉल हम समझा सकते हैं, इंस्टा के थ्रू हम लोग लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे, लोग हमें दूर दूर से जो इंडिया के कॉर्नर पे रह रहे हैं वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि मुंबई आना पड़े।
0: हो, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। वो वीडियो बना के भेज देते होंगे आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब से ये इंटरनेट की सुविधा बेहतर हुई है ना, तब से तो ऐसा हो गया है सर कि हम लोग एक जगह बैठ करके, जैसे मुंबई में बैठे हैं और मैं जयपुर की कई प्रोजेक्ट की कास्टिंग करता हूँ, एक एक दिन में 20-20, 30-30 ऑडिशंस मंगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुविधा तो हुई है सर। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि नए नए टैलेंट आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ के जो बैरियर थे ना कि हर कोई मुंबई नहीं आ सकता,
0: डिस्टेंस का बैरियर और टाइम का बैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल
1: वो खत्म हो गया है सर। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग और ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल एक अलग चीज हो गई जो मैंने बताया, लेकिन जो लोग एक्टिव हो सकते हैं ना वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि यार अभी मुझे सिर्फ 4 एक्टर नहीं देखना मेरे कैरेक्टर के लिए, अब मैं 40 भी देख सकता हूँ, 400 भी देख सकता हूँ, 4,000 भी देख सकता हूँ, तो अब
0: बिल्कुल
1: मेरे
0: सही।
1: पास जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो और नीट एंड क्लीन हो गया है।
0: चॉइसेस बढ़ गई हैं आपकी, बहुत
1: यस
0: चॉइसेस
1: यस, क्योंकि चॉइसेस
0: ऑप्शंस
1: वही है कि सिलेक्शन बेहतर तभी हो सकता है जब ऑप्शंस होंगे सर।
0: ऑप्शंस है, बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हो गए
1: हाँ,
0: आपके पास।
1: क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं एक मॉल खड़ा कर दिया है कि जहां आपको एक ही जगह पे सारी वैरायटी मिल जाएगी, आप
0: बिल्कुल, ये
1: सेलेक्ट
0: बड़ी
1: करो कि आपको चाहिए क्या।
0: बड़ी बात है। एक मॉल में जैसे हम जाके आपको मल्टी ब्रांड चीजें मिल जाती है, आपको हर चीज मिल रही है वहां वहां, बिल्कुल सही
1: आप
0: बात
1: देखो ना, आप दुकान पे जाते हो, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, याद आ जाएगा तो आप दो प्रोडक्ट खरीद लोगे। आप मॉल में एक बार जाइए सर, आप खरीदने दो प्रोडक्ट जाएंगे, लेके 20 आएंगे, तो
0: आएंगे, बिल्कुल सही बात है,
1: वो
0: बिल्कुल
1: वही बात है।
0: सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे कॉरपोरेट प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं आपके यहाँ तो आजकल बड़े बड़े, तो और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से कास्टिंग सिस्टम में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया होगा, कुछ उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे क्या हो रहा है ये कॉरपोरेट हाउसेज आने से।
1: सर वही है कि ओटीटी की वजह से ये है कि काफी वेरिएशन आया है, कि जो आप नॉन फेस और जो न्यू फेस की बात कर रहे थे ना, कि सिनेमा में एक लिमिटेड स्क्रीन्स हैं, तो उन लिमिटेड स्क्रीन में आपको लिमिटेड एक्टर्स के लिए भी वो अवेलेबल होती थी। ओटीटी ने अब ये कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर जो बेहतर एक्टर है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, उसको कम लोग जानते हैं, अगर वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर और वो एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं।
0: देखना, बिल्कुल सही बात।
1: मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, कितनी ऐसी फिल्में हैं जो 10 साल पहले रिलीज हुई थी, तब उन्होंने किसी ने पूछा नहीं उनको, और लोग वापस से रिटर्न होकर के आ रहे हैं कि यार ये क्या कमाल का काम किया इन्होंने। और उन एक्टर को वापस से एक तवज्जो मिल रही है जिनको लोग कहीं ना कहीं जानते भी नहीं थे और भूल गए थे।
0: भूल गए थे,
1: पसंद किए, ऑडिशन किए। मैंने भले 20 लोगों के ऑडिशन किए, 50 लोगों के, मुझे उसमें से 5 लोग अच्छे लगे कि ये कैरेक्टर में बेहतर है, ठीक है, मैं उनको डायरेक्टर को दिखाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि यार अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दोनों चीजें बता देगा। कई बार बोलेगा यार ये 5 में से 2 अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और हो सकता है एक्सप्लोर। हम लोग वापस से एक्सप्लोर करते हैं कि फिर वापस से 20 लोग का, 30 लोग का, 50 लोग का, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वापस से ऑडिशन करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। फिर डायरेक्टर आगे जो चाहे प्रोड्यूसर को हो या चैनल को होता है, जैसे अभी चैनल का ओटीटी में चैनल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, कि चैनल अपनी तरफ से आप एक अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस देते हो, चैनल फिर बताता है कि नहीं नहीं यार इस पे आप सही जा रहे हो, या अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है ना उसको आपको चैनल को एक बार दिखाना होता है।
0: अच्छा अच्छा, ये बात
1: तो अभी ऐसा है कि अब वो वन साइडेड कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने चाहा कि मुझे इसी एक्टर को लेना है, ठीक है, तो वो कई बार चीजें कम हो गई है। कि अब ये है कि अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो आगे तक अच्छा ही लगेगा सब। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें फेयर हो गई हैं, कि आपके इंडिविजुअली एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बोल दिया डन तो डन हो गया, नहीं होगा। हाँ, और जो जेन्युइन काम करते हैं अच्छे लोग, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इवन ये होते हैं वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं, 8-10 लोगों की टीम के साथ, और सामने बैठ के टीवी पे या स्क्रीन पे ऑडिशन चलते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर से डिस्कशन होता है कि बताओ क्या, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसकी ये खासियत है, इसका पहले की ट्रेनिंग ऐसी है, ये कैरेक्टर में ये ऑडिशन अच्छा है, ऑडिशन के अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी 4 चीजें एड ऑन क्या है वो सारी बताता है, फिर टीम वाले बताते हैं कि नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा है तो अच्छी बात बता देते हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं सर एक फाइनल डिसीजन तो कहीं ना कहीं जो कोर टीम होती है उन्हीं का होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसको मैं फाइनल डिसीजन वन साइडेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। मतलब डायरेक्टर कई बार हमसे भी पूछता है कि यार तुझे कौन सा लगता है जो बढ़िया कर जाए, क्योंकि तू एक्टर को ज्यादा बेहतर जानता है पर्सनली, ठीक है, तो हम लोग कई बार सजेस्ट करते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टर उनको पसंद करता है, उनको फाइनल करते हैं।
0: अच्छा, अभी बताइए, जैसे एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं या आप लोग एक्टिवली टैलेंट सर्च करते हैं, तो आपके पास कहाँ से ये रॉ मटेरियल आता है?
1: सर ये क्या है, म्यूचुअली होता है कि हम लोग जनरली हमारे एक नंबर प्रोवाइड होते हैं या स्टूडियो होते हैं जहाँ पे लोग रैंडमली विजिट कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं।
0: प्रोफाइल भेज सकते, ओके,
1: ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग पेज पे डालते हैं कि भाई आप हमारा नंबर ये है तो आप अपनी प्रोफाइल भेजिए, तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोफाइल होती है उनको हम लोग वापस से मैसेज करते हैं कि आपके लुक में एक कैरेक्टर है तो प्लीज ये डिटेल्स है, आप इसके बारे में हम जानकारी जो आपको चाहिए वो देते हैं, आप ऑफलाइन ऑडिशन लेने आ सकते हो, आप आ जाइए, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन आपका मंगा सकते हैं। और किस, और वही है कि पहले कई बार एक्टर करते हैं, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास जो प्रोफाइल है अगर उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही ना, फिर हम लोग मैसेज सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, अपने कास्टिंग वालों से एक वो बोलते हैं कि यार मुझे आगरा की लैंग्वेज का एक एक्टर चाहिए, तो उस साइड पे कोई जानकार है क्या जो एक्टर हैं, तो इस तरीके से सर्चिंग बड़ी पैरेलल चल रही होती है सर।
0: तो अच्छा, कोई स्टोरी की इम्पोर्टेंस होती है इस सारे प्रोसेस में, के कास्टिंग करते समय स्टोरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है?
1: हाँ,
0: तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले कास्टिंग से? पहले
1: हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट से ही होती है, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग रीड आउट करते हैं उस पूरी स्क्रिप्ट को, अच्छा। और फिर हम लोग कई बार हमारी कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, हम डायरेक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं करें, क्योंकि एक्टर को भी हम लोग कन्विंस तभी कर सकते हैं ना,
0: सही बात है,
1: जब हमें उस स्टोरी के बारे में ज्यादा बेहतर बताऊं।
0: तो समीर जी काम तो बड़ी मेहनत का है आपका भाई, मैं इंप्रेस्ड बहुत मेहनत का काम है, और फिजिकली भी मेहनत है, मेंटली भी बहुत मेहनत है, हर तरह से बहुत मेहनत है।
1: सर जब कास्टिंग चल रही होती है ना सर, उस वक्त हमें सच में नहीं पता होता, मतलब हमें भी लगता है कि एक्टर्स की भी कई शिकायतें होती हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये समझ लो सर कि हमारी वो स्थिति होती है कि जैसे शादी में दूल्हे की होती है ना स्टेज पे, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो हमारी वो दूल्हे वाली स्थिति होती है कि उस वक्त हम लोग वो नहीं कर सकते कि हमें काम निकालना होता है, हम उस वक्त इमोशंस पे नहीं होते, तो कई बार हमें दुख भी होता है क्योंकि एट द एंड सर ह्यूमन ही है, और मैं भी एक्टर हूं तो उस बात को और बेहतर समझता हूं।
0: कई बार ब्रश असाइड कर देते होंगे आप लोगों को, यार चलो नहीं ये नहीं है, उसका बेचारे का दिल टूटता ही होगा नेचुरली।
1: सर आप ये सोचो ना कि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं एक एक दो दो दिन, कई बार घर वालों के जब हम खुद के इमोशंस को साइड कर रहे हैं तो फिर बाकी के इमोशंस तो क्या, वो काम का है ना सर, वो हमारे काम के लिए ईमानदारी है, वो गलत है कास्टिंग डायरेक्टर का कि आप खाली बैठे हो, कोई आपके सामने से मिल रहा है, फिर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, गाने सुन रहे हो, तब आप बात नहीं करो, वो एक अलग बात है, लेकिन काम के दरमियान ऐसा होता है कि काम के दरमियान आप चाह के भी नहीं बात कर सकते, वही वाली बात है कि दूल्हे दूल्हे दूल्हा जब दूल्हे की शादी होती है ना तो उस वक्त तो भले ही उसके कितने भी खास दोस्त हैं, वो एक घंटा नहीं दे सकता ना सर उनसे,
0: सही बात है, सही।
1: वो उस वक्त पहले ही बोल दिया होता है कि यार सुनना मैं उस वक्त व्यस्त रहूंगा, शादी में आना ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना,
0: आना और खाना खाना और चले जाना,
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। मिलके जरूर जाना,
0: मिलके जरूर जाना। हाँ समीर जी, अब ये बताइए कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें इतना सारा ये प्रोसेस बता दिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहां आपने किसी नए टैलेंट को डिस्कवर किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने इंट्रोड्यूस किया हो फिल्म इंडस्ट्री को, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: सर मेरे लिए सबसे खूबसूरती की बात यही है कास्टिंग प्रोसेस में, कि मुझे नए फेस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मुझे लगता है कि यार मैं कुछ मेरे लिए काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है, एस्टेब्लिश एक्टर है, नोन फेस है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ही करेगा ऑडिशन, नो डाउट, क्योंकि उसका खुद का ही एक्सपीरियंस इतना है, लेकिन एक नए फेस को एक्टिंग ऑडिशन वाले प्रोसेस में कराना और डायरेक्टर को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है सर। और मेरी किक एक्चुअली, मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हें किक किस में मिलती है, तो मुझे किक एक नए एक्टर के साथ में अच्छा ऑडिशन कराने में किक मिलती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो मैं बड़ा ही मजा, मतलब एंजॉय करता हूँ, जैसे एक कटल में एक बच्ची है, अमिया नाम का कैरेक्टर है, अगर जिन्होंने भी वो फिल्म देखी हो।
0: अच्छा।
1: तो वो उसकी लाइफ का पहला ऑडिशन था और पहली बार वो एक्टिंग भी शायद 2-3 महीने पहले उसने थिएटर ज्वाइन किया था जयपुर में।
0: अच्छा।
1: और वहां पे वो ऑडिशन देने के लिए आई थी रैंडमली, तो मैंने पहला ऑडिशन लिया, तो मुझे भी लगा कि यार अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, कैमरा फ्रेंडली होना, लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार आप बिलीव करते हो कि यार लेट्स ट्राई ना, एक्सप्लोर करते, दूसरा टेक लिया पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, तीसरा लिया, चौथा लिया, एट द एंड कुछ 8-10 टेक हुए थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और वो 8-10 टेक में ये हो गया कि अब बेस्ट मिल गया है।
0: ओके ओके।
1: हाँ, और अजीब बात यह कि उसके साथ में जो मैंने 4 लोगों के ऑडिशंस किए, वो लोग फाइनेस्ट एक्टर थे ऑलरेडी।
0: ओके ओके।
1: हाँ, लेकिन एक होता है ना कि एक रॉनेस जो होती है किसी एक्टर में, वो नेचुरली होती है ना, तो वो फिर आगे मैंने ऑप्शंस भेजे और फाइनली, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ना, हाँ। कि शायद यार इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और फाइनली ये हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली जयपुर रहते हुए ही मुंबई से, कि जो लोग मुंबई में 5-5 साल रह के पूरी नहीं कर पाते, और अभी वो शिक्षा एंटरटेनमेंट के जो चाइल्ड सुपर स्टार्स हैं उसमें। अच्छा। उसको काउंट किया जाता है सर,
0: सही बात है। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह का पुण्य का काम है साहब, आपने मतलब एक रॉ पत्थर को तराश के हीरा बना देते हो, अगर इस
1: सर, ऐसे मतलब बहुत दुआएं मिलती है सर, बहुत दुआएं,
0: बहुत दुआएं,
1: बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है सर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बचपन में मेरी फैमिली के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला है, दोस्तों के थ्रू बहुत प्यार मिला है, और जिस करियर में हूँ, जिस मैं पोस्ट पे हूँ ना, उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है सर। प्यार के अलावा दुआएं बहुत मिलती हैं,
0: लोगों की आंखें भीग जाती होंगी साहब जब आप उनको ऐसा चांस देते होंगे। मैं तो
1: सर कितना अच्छा लगता है कि किसी के मैंने ऑडिशंस किए, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि यार प्रोसेस क्या होता है ऑडिशन का। ठीक है, कोई मेरी 3 दिन की वर्कशॉप करता हूं मैं, जिसमें मैं ऑडिशन की प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ।
0: अच्छा, अच्छा,
1: लोग वहां से सीख के जाते हैं और कहीं उनका 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कहीं सिलेक्शन होता है, फिर उनका वो पहली बार मैसेज आता है कि सर मैंने आपसे वहां से ऑडिशन का प्रोसेस सीखा, उसको मैंने कंटिन्यू किया और मुझे प्रोजेक्ट मिला है सर, थैंक यू वेरी मच।
0: याद तो करते ही होंगे आपको, सही बात।
1: हाँ, तो वो बैठा है कि ब्लेस्ड है सच में।
0: अच्छा, अब थोड़ा सा जिस विषय पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी, कास्टिंग काउच के लेकर बहुत सारी बातें होती है, तो एज ए प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आप इस रियलिटी पे क्या कहना चाहेंगे, मिथ है, ट्रुथ है, या हाफ ट्रुथ है, या हाफ मिथ है, कुछ इसके बारे में बताएं।
1: ये उसी तरीके से है कि भगवान होते हैं, शैतान होते हैं, ठीक है, देखा किसी ने नहीं है सर। ठीक है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे रात को भगवान दिखे थे, और कई लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखा था। तो यही है कि ये होता है, सिर्फ मानने पे है। ठीक है, ये वही थ्योरी है, जैसे मुझे 7 साल हो गए सर, मैंने नहीं देखा कभी।
0: अच्छा,
1: ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जैसे वो बच्ची को कास्ट किया था मैंने, कई सीरीज में मैंने लीड एक्टर भी कास्ट किए हैं जिनका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था।
0: ओके,
1: तो कहीं ना कहीं मैं जिस प्रोसेस पे चल रहा हूँ ना, मैं उसी पे बिलीव करूंगा सर। और मैं लोगों को भी यही समझाता हूँ कि आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। यही है कि, और कई लोगों के लिए सर कास्टिंग काउच इतनी ज्यादा प्रभावी है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार इसके बिना काम ही नहीं मिलेगा। और मैं ये बोलता हूँ कि यार मैंने पिछले 5-7 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं ये तो एग्जीक्यूशन वाली बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपोल कल्पना बोल रहा हूँ, कि मेरा कोई इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट नहीं है कि मैं कास्टिंग वाला होकर के मैं जुगाड़ लगा करके किसी का सिलेक्शन करवा रहा हूँ। जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेरे रिश्तेदार नहीं है, जानकार नहीं है, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही है ना कि आप अच्छा ऑडिशन दो, आप कास्ट हो जाओगे, दैट्स इट। तो कास्टिंग काउच तो वो है कि सिर्फ होता है ना कि हर जगह चाकू के दो काम होते हैं, या तो आप उससे सलाद काट लो, सब्जी काट लो, फल काट लो, या फिर किसी का गर्दन काट लो। तो इट्स डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन सर। और मुझे तो ये लगता है कि जब भी मैं किसी नए फेस को, स्पेसिफिक लड़कियों को, मैं अगर किसी अच्छे कैरेक्टर में कास्ट करता हूँ ना सर, तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं होती कि मैंने एक एक्टर कास्ट किया है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो एक लड़की है ना, वो 5 लड़कियों को ये बताएगी कि भाई कोई कैरेक्टर पाने के लिए आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत है, आपको आपके काम के बिहाफ पे काम मिल जाएगा, और वो 5 लड़कियां और भी 5 लोगों को बताती हैं। तो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है कि अगर कोई नया फेस है ना, और वो अच्छे कैरेक्टर में जाता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सर इस मिथ को, लोगों की जो मिथ बनी हुई है ना थ्रू आउट, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वही है कि जब आप बेहतर टैलेंट देते हो ना, तो फिर सारे एक्सक्यूज साइड में हो जाते हैं सर। और आप देख लो कि आज इंडस्ट्री में जो टॉप 10 लोग हैं सीरीज में खासकर, वो लोग हैं जिनका इंडस्ट्री का में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सब लोग उसी तरीके के हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट है, वो बहुत मायने रखता है।
0: चलिए, बहुत ही बढ़िया तरह खूबसूरती से आपने जवाब दे दिया इस ट्रिकी से सवाल का, मजा आ गया। तो अब हम करीब करीब समीर जी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो हर साल कई यंगस्टर ड्रीम्स लेकर मुंबई आते हैं, उनके लिए आपका क्या ऑनेस्ट मैसेज है, हालांकि अभी आपने बताया।
1: ऑनेस्ट मैसेज तो यही है कि जितना बेहतर हो सके कॉन्टेक्ट बनाने की जगह क्राफ्ट पे काम कर लें, और ऑडिशन का जो इम्पोर्टेंस है ना उसको जितना आप बेहतर समझ लोगे ना कि आपको एक्टिंग आने के साथ साथ एक अच्छा ऑडिशन भी आना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं एक रोल दिलाने में मतलब सबसे बड़ा योगदान है एक अच्छे ऑडिशन का। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर कैमरे पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे पर ही करनी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़ते हो, आप थिएटर करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपका कहीं ना कहीं उससे बेस क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल थिएटर करो या 5 साल बुक्स पढ़ो और उसके बाद आप सीधा कैमरे के सामने आओ और आप कुछ कमाल कर दोगे, नहीं कर पाओगे सर।
0: ओके ओके,
1: आपको पैरेलल ये सारी प्रोसेस रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस कैमरे पे भी करनी पड़ेगी अगर आपको सिनेमा के लिए काम करना है।
0: बड़ी गहरी बात कह दी आपने यार समीर जी, मजा आ गया इस बात में आपकी। मतलब ये मैसेज
1: सर, वो आपकी वाइब इतनी अच्छी है ना कि मेरे अंदर से अपने आप कुछ अच्छी बातें आप निकाल रहे हो, जैसे हम लोग एक्टर से निकालते हैं।
0: कैमरे पे एक्टिंग, कैमरे के सामने एक्टिंग करना, ये काम इट इज डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये मतलब भले ही आप स्टेज एक्टर कितने अच्छे हो, कितने अच्छे सिंगर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप जब तक कैमरे से आपकी दोस्ती नहीं हो। संजीव कुमार के लिए कहा करते थे वो एक उसमें ही जाने कितने वो कर देते थे, उसके लिए बताते थे लोग। बिल्कुल सही,
1: क्योंकि ये सर ये वही वाली बात है कि आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया ना तो बेस तो वही है, इंजन का बेस ही है, रेस है, क्लच है, आपको स्टार्ट कैसे करनी होती है, प्रोसेस सेम है, कार का भी सेम है, ट्रक का भी सेम, जीप का भी सेम है। लेकिन आप बाइक चला के आप कार डायरेक्टली स्पीड से नहीं चला सकते, तो आपको कार चलाने के लिए कार भी सीखना पड़ेगा बैठ कर।
0: कार भी
1: तो वही ये है कि थिएटर जो है वो कहीं ना कहीं बेस है, वो इंजन है एक तरीके से जो आपको पावर देता है। लेकिन अगर आपको जितनी वेरिएशन की आपको गाड़ी सीखनी है तो आपको उसको चलाना ही पड़ेगा सर। तो वही कैमरे के ऑडिशन का प्रोसेस है कि आपको कैमरे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो वो काम हो पाएगा। यस
0: बिल्कुल, आपको कैमरे के सामने सहज होना, कैमरे से दोस्ती होना और कैमरा कॉन्शियस ना होना, तीनों चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट।
1: मतलब एक टैगलाइन देता हूं सर मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप में कि बेसिकली कैमरा घोस्ट होता है।
0: ओके,
1: कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है। जो लोग 1 लाख लोगों के सामने बोलते हैं ना, जब वो कैमरे के सामने आते हैं सर, मैंने इतने लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते हैं सर, गला सूख जाता है उनका।
0: बिल्कुल सही बात
1: है। तो कैमरे को घोस्ट बना, घोस्ट है कैमरा, उसको जब तक आप दोस्त नहीं बनाओगे
0: वाह,
1: तब तक आपका आप एक्टिंग जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग क्या है कैमरे के लिए, जब तक वो कैमरा आपका दोस्त नहीं बनेगा ना, तब आपकी शुरुआत होगी एक्टिंग की कि यार चलो अब कुछ करते हैं। तो पहले तो आपको दोस्त बनाना पड़ेगा कैमरे।
0: मजा आ गया आपके दोस्त और घोस्ट वाली बात तो बस लाख टके की बात है, यही कहूँ।
1: हाँ सर,
0: लाख टके की बात है। तो चलिए मैं तो अब बस आपसे आखिरी एक छोटी सी बात कर रहा था कि अगर एक फिल्म कास्ट करनी हो समीर पहाड़िया जी को, तो रियल लाइफ स्ट्रेंजर्स में आपको करेक्टर ढूंढने, टैलेंट ढूंढने आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन पे ढूंढेंगे, थिएटर ग्रुप में ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अगर आपको अपनी एक फिल्म कास्ट करनी हो तो?
1: सर मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा जब तक मुझे बेहतर ऑप्शन मिले।
0: चलिए
1: तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इतने अप्रोक्सीमेट होते हैं कि हम लोग अपने आपके सिलेक्शन को जैसे सबको बताएंगे, थिएटर ग्रुप में जाएंगे तो थिएटर में एक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कैरेक्टर चाहिए कालबेलिया वाले लोग, तो हम लोग कालबेलिया वालों के पास जाते हैं हम लोग। जैसे कई बार वो रस्सी पे चलते हैं, उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रीट कास्टिंग बोलते हैं लैंग्वेज में। तो हम लोग ऐसा है कि जब तक हमें बेहतर कैरेक्टर नहीं मिल जाता ना, हम लोग हर जगह जाते हैं सर, लोगों को मैसेज करते हैं। अगर हमें आसाम का कोई एक्टर चाहिए तो आसाम तो जो हमारा रिश्तेदार भी होगा ना, उससे भी हम लोग कॉल करके, जिससे हम कभी एक साल में बात नहीं करते हैं ना, उससे भी हम लोग कॉल करके पूछ लेते हैं कि और बताइए सर क्या हालचाल, बढ़िया यार, उधर कोई थिएटर वगैरह है क्या, कोई एक्टिंग वर्किंग करता है तो कोई जानकारी हो तो नंबर दो ना। तो आप समझ रहे हो ना कि जितना एक्टर हमें अप्रोच नहीं करता उससे ज्यादा हम लोग एक्टर को
0: अप्रोच करते। मजा आएगा। चलिए तो दोस्तों ये थी हमारी खास बातचीत कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया जी के साथ। आज हमने जाना कि फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में कास्टिंग सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां कहानी किरदार और इंसान तीनों को जोड़ने का काम होता है। समीर जी ने यह भी बताया कि स्ट्रगल रियल है लेकिन टैलेंट पेशेंस और प्रोफेशनल से रास्ते बनते हैं। न्यू कमर्स के लिए उनका साफ संदेश है ड्रीम बिग बट कम प्रिपेयर्ड। हम उम्मीद करते हैं आज की बातचीत आपको फिल्म इंडस्ट्री को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। मैं समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की।
1: सर मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैं मतलब मेरे अंदर जो इतनी सारी चीजें थी ना उनको आपने बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है तो थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जितना आप बेहतर से जी सकते हो जी लो क्योंकि कल पता नहीं है क्या हो जाए।
0: चलिए चलिए तो अगर आप भी एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं तो याद रखिए सही टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता बस सही मौका और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक सपने देखते रहिए मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबवा की आवाज।
1: लुई पास्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
4: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
5: चलो
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।

0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो
2: चलो चलो चलो
3: चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
4: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
4: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
4: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
4: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
4: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
4: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
4: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
4: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
4: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
4: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
1: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ।
6: I am sure 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
7: सर सर ये टेलीग्राम।
6: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
7: क्या हुआ सर?
6: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
7: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
6: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
7: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
6: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
4: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
8: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
6: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
8: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
6: देखिए आप,
8: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
6: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
8: मेरा अच्छा, बेटा।
6: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
4: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
4: मास्टर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन मास्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही मास्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
4: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
5: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विज्ञान गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM झाबुआ की

कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंद वन। आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे
इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब है बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटे के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद का।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। '78 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज,
1: रेलगाड़ी।
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
5: अरे हाँ, गाड़ी रोको गाड़ी रोको।
4: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
5: हाँ, अब बन गई रेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
5: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
6: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
5: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
6: चलो
3: रेल चली भाई रेल चली,
6: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
4: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
6: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
4: अच्छा
6: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
5: दादाजी, मैंने देखी है।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: जब माँ के साथ नाना जी

0: को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
1: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
0: अरे वाह,
1: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
2: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
1: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
3: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
3: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में।
1: बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
3: उतरो उतरो।
0: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
1: हाँ हाँ उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
2: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
0: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
5: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक छुक।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मुर्गासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आसपास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे कहाँ पर नीम का पौधा है, वहां पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और तो मैं किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी
और सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रीतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहां पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुआई का सही समय जो रहता है, नीम की बुआई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुआई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुआई द्वारा लगाया जाता है। और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बात है।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
3: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो विकसित नई विकसित प्रजातियां हैं ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फल फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
2: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का

0: कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
1: जहां नीम एक तरह से एक फंडरू ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाए इसके कि हम कोई छाया ले लें, कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जहां वृक्ष और कृषि दोनों जो जो जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
0: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफको की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है ताकि यहां इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
2: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से, जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहां से शुरू होती है, फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण, उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफको की टीम ने और FRI के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है FRI के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
0: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफको ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
2: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहां से और इतना निबोली कहां से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निबोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में, क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा। इसके लिए
3: इसमें पॉलीप्लाइडिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण दो चीजें होंगी, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कॉन्टेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लाइडिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते इस प्यारे से भीली गीत को, बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात। Yeah.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है

0: में मिनिमम 7000 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
1: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दें और उसमें जो निमोडिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दें, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पे नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
1: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
0: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है। लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है। जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बातचीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 1992-93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको की सहायता से इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।
0: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैदेटिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।
0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा, अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
2: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
2: बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
3: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद
2: जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बुढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
0: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
2: कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे, तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनल में कोई छेड़खानी नहीं होती यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहां से लाते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया तब हम उसको हमने क्या किया उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
0: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
3: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
0: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
4: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल, इस जो ये जो तेल है, नीम का तेल जो है, ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडेरिक्टिन। एजाडेरिक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडेरिक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडेरिक्टिन ए, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
5: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं, उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं, और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है, और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
6: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
0: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरह से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं, इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधि खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर एक खास महफिल जिंदगी के रंग गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे तनुषा तरानों के हम सफर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उन सफरों की जो सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं होते, बल्कि हिम्मत, बदलाव और खुद को पहचानने की कहानियां होते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ को एक नई दिशा दी, भावना जुनेजा जी, ग्लोबल CEO ऑफ इंफिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हजारों लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सो थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हर गेस्ट को हम उनके बचपन में लेके जाते हैं। भावना जी, आपका बचपन एक सिंगल मदर के साथ गुजरा और आप खुद को एक बहुत शाय, एक बहुत रिजर्व्ड, एक सेल्फ कॉन्शियस लड़की के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं आज। तो आपके जीवन में वो कौन सा पल था, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये महसूस किया कि इस डर के आगे आपकी असली पहचान छुपी है, आप जो एक्चुअल में है वो छुपा है?
2: पहले तो मैं ये कहूंगी कि भाई, आपको मालूम है इंडियन सोसाइटी में एक सिंगल मदर अपने बच्चों को रेज कर रही है, वो भी लेट अर्ली 90s में, वो एक कोई इजी दौरान नहीं होता था उस टाइम पे वुमेन के लिए। एंड मैं ये सोचती थी कि भाई मेरी मदर क्यों मुझे इतना ज्यादा पुश करती हैं कि आप इतने शाय मत रहो। मैं सारे टाइम रोती रहती थी, अपनी मदर के पीछे रहती थी, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी, मैं बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट लड़की थी। बट एक पल ऐसा आया जब मेरे फादर ने डिसाइड करा कि अब मैं मेरी मदर के साथ नहीं रहूंगा, तो मुझे ये लगा कि भाई एक पल ऐसा आना चाहिए आपकी लाइफ में जब आपको एक वेकअप कॉल मिलती है। और मेरे लिए वो एक वेकअप कॉल थी कि जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया, कल को वो अपने बच्चों को भी छोड़ सकता है। तो आज अगर मैं सेल्फ निर्भर नहीं हुई और मेरी मदर की हेल्प से मैं वो हुई, तो मैं अगर सेल्फ निर्भर नहीं हुई तो यही होता रहेगा कि मैं सारे टाइम पीछे ही रह जाऊंगी और मैं अपना एक नाम नहीं बना पाऊंगी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एक वुमेन को अपनी पहचान बनानी ही पड़ेगी, जबकि मैं उस टाइम सिर्फ 13 साल की थी। बट मैंने ये रियलाइज कर लिया कि आगे तो मैं अब बढ़ के ही रहूंगी।
1: हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ मेच्योर, आप उस टाइम एक 13 साल की बच्ची के लिए इतना सब कुछ डिसाइफर कर लेना, उसको समझ लेना, उसकी गहराई में उतर जाना और ये डिसाइड कर लेना कि मुझे अपने लिए कुछ करना है क्योंकि आई एम माई ओन पर्सन, वो एक बहुत बड़ी बात होती है मैम। तो कहीं ना कहीं आप एक चोजन वन हैं, जैसे कि आप खुद मानते हैं कि आप एक डेस्टिनीज चाइल्ड हैं। इसी एहसास के साथ दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा कदम अपने डर के आगे बढ़ना होता है। इसी एहसास के साथ हम सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत, आती रहेंगी बहारें।

0: वेलकम बैक भावना जी।
1: थैंक यू।
0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। भावना जी, आपकी जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि आपने 18 इयर्स की एज में अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी फीट है किसी के लिए भी अचीव करना। ये किस तरह से हुआ आपके जीवन में, किस तरह से जिम्मेदारियों ने आपको घेर लिया और आपने इतनी यंग एज में अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, ये जर्नी कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: सो मैं 16 साल की थी जब मैंने ये रियलाइज करा अपनी ओल्डर सिस्टर के साथ कि अगर हम अपनी मदर को हेल्प नहीं करेंगे बाहर जाके काम करने के लिए तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो हम तीन बहनें हैं, एक सिंगल मदर, तीन बहनें, और मेरी मदर हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दूंगी कि तुम देखना कि पीछे मुड़ के जब तुम देखोगे ना कहोगे अरे ये मैं ही हूं। तो हम लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं कि हमारी मदर ने हमें इतना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस दिया कि आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। पर वो फाइनेंशियल जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा थी। आप मानेंगे नहीं, उस टाइम हमारे लिए एक बैग ऑफ चिप्स हम जो लेते थे ना फ्राइडे के लिए, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी डील होती थी। और आज मैं लाखों करोड़ों में

0: करती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा सिर नहीं झुकने दूंगी, पर तुम्हें जाके बाहर काम करना पड़ेगा। और हमने काम शुरू करा, मैंने जॉब शुरू करी। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई अपना बिजनेस, मैंने देखा कि मेरे अंदर एक सेल्स की बड़ी अट्रैक्शन थी, बहुत पावर थी। मुझे लोगों से बात करना अब अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे इतना डोर टू डोर सेल्स भेजा था कि मुझे लगा कि अब तो मैं बात कर सकती हूँ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई ना कह देगा तो ना मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नो नहीं होता, वो एंड नहीं होता मेरे लिए। एंड का मतलब ये होता है कि एफर्ट नेवर डाइज, आप अपना एफर्ट डालते जाइए। तो मैंने अपना बिजनेस शुरू करा और आप मानेंगे नहीं, मैंने अमेरिका में उस टाइम पे टेलेक्स होते थे और फैक्स होते थे, मैं फैक्स भेजती थी और एक बायर आया, उसने मेरे को आइडेंटिफाई करा, उसने एक टिश्यू पेपर पे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हारे को काम दूंगा। और उस दिन से फिर मेरे लिए मेरी जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज होती थी। और इट वॉज सच अ ग्रेट थिंग कि वो बिजनेस फिर शादी के बाद आगे मैंने अपनी मदर को पास ऑन करा और उन्होंने मेरी छोटी बहन को।
1: हाउ ब्यूटिफुल। तो आपने इतनी यंग एज में अपनी एक लेगेसी बना ली मैम, बहुत बड़ी बात है ये।
0: एब्सोल्युटली
1: जी, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं हम आज आपसे बात करके। एंड आई एम श्योर हमारे श्रोतागण जो हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, वो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक डार्कनेस की तरफ ले जाएं। कई बार उस डार्कनेस को आप लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपनी इंस्पिरेशन से। और उसी इंस्पिरेशन के सोर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भावना जी आपकी लाइफ में आपकी मदर, जैसे आपने बताया, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही, एक बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही। और मैं मानती हूं कि घर की अगर महिला स्ट्रांग है, अगर वुमन स्ट्रांग है, तो पूरा घर में वो स्ट्रेंथ डाउनलोड होती है। तो ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपके लिए? जैसे आपने बताया आपकी मदर ने आपको डोर टू डोर सेल्स के लिए भेजा बहुत यंग एज में, उससे आपने क्या क्या सीखा? और आपकी मदर के साथ कुछ बिताए हुए पल, कोई स्पेशल पल अगर आज आपको याद आ रहे हैं इस इंटरव्यू के दौरान, तो वो क्या होंगे अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें?
0: आपने एक बहुत, वो कहते हैं ना, एक ऐसी कॉर्ड टच कर दी है कि क्या मुझे मेरी माँ का याद आता है। मेरी माँ तो मेरे अंदर है, वो मेरे अस्तित्व में है, वो मेरी सोल में है। और मैं आगे अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, पर एक बात मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती है कि मेरी माँ का बहुत ज्यादा वजन था। आप देखेंगे इंडियन वुमेन अपने आप को शादी और बच्चों के बाद बिल्कुल अपनी टेक केयर करना ही छोड़ देती है। मेरी मदर ने भी कर दिया था, प्लस हमारे फैमिली में स्ट्रेस भी बहुत था, 3 बेटियों को बड़ा करना था इज्जत से। वो बहुत बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, पर वो सुबह उठ के शीशे के सामने अपने बाल ठीक करती थी और लिपस्टिक लगाती थी और कहती थी आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज तो मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। और ये मैं कह रही हूँ एक लेडी जो ओवर 120 kgs थी, वो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी आज भी मुझे गूसबम्स आते हैं ये बात करते वक्त। वो ये कहती थी कि भाई अपने आप को प्रेज करो, कोई तुम्हें क्यों प्रेज करे, तुम पहले अपने आप को प्रेज करो। आज हम करीना कपूर की बातें करते हैं, मैं अपनी फेवरेट थी, मैंने तो ये बचपन से देखा है अपनी मदर में कि वो अपनी फेवरेट थी। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ थी, है और रहेगी। मेरी माँ ने ऐसी चीजें हमारे अंदर फिल करी कि भाई आप अगर हमारी फाउंडेशन देखें ना, तो कोई भी आ जाए, बस भगवान आएगा वो हिला सकता है, और कोई इंसान तो नहीं हिला पाएगा। क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि तुम गिरोगे तभी तुम उठने का मजा ले पाओगे, अगर तुम गिरोगे ही नहीं। और एक बहुत अच्छी लाइन मेरी मम्मी ये कहती थी कि आप हॉस्पिटल में जो मरीज होता है और इतनी सारी उसमें वो जो पाइपे और वो जो मशीन लगी होती है, वो ऊपर नीचे जा रही है लाइन, मतलब जिंदा है, फ्लैट लाइन मतलब आप डेड हो। तो आपकी लाइन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। और ये मेरी लाइफ का रोलर कोस्टर जो है, जो मेरी जर्नी रही है, वो मेरी मदर की सबसे बड़ी सीख है और वो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ।
1: बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर बातें आपसे हो रही हैं। मैं इमेजिन कर सकती हूँ जब आपने ये पूरा वाक्या हमारे साथ शेयर किया, किस तरह से आपकी मदर ये करती होंगी आईने के सामने, मैं उसको इमेजिन कर सकती हूँ। और क्या शख्सियत रही होगी उनकी, आई विश हम उनको भी सुन पाते आज, बट आपके थ्रू हम उनको जान पा रहे हैं, उनकी गहराइयों में जा पा रहे हैं। और सच है कि वैलिडेशन बाहर से नहीं, सबसे पहले खुद से आना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो दुनिया में कोई कुछ भी कह ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा एक लैक की स्पेस में रहेंगे, एक लैक

की स्पेस से ऑपरेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ रिश्ते हमें बनाते हैं, हमारी बुनियाद होते हैं और उनकी सीख जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। सुनते हैं इसी बात पे हमारा अगला गीत, दो नैना और एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक भावना जी। मैम, आपने लाइफ अब्रॉड में स्पेंड की, काफी सारे समय आपके जीवन के अब्रॉड में गए। 21 साल की उम्र में आपने हमें बताया कि आप एक नए देश गई और 28 साल की उम्र में आप एक सिंगल मदर के रूप में दो बच्चों की जिम्मेदारी के साथ आपने जीवन व्यतीत किया। आई एम श्योर ये भी बहुत डिफिकल्ट दौर रहा होगा, तो ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन का? इस पॉइंट में आपने क्या सीखे ली, क्या आपको महसूस हुए, किस तरह से आप उभरी अपनी परेशानियों से और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ी, कैसे एक्सपीरियंसेस थे ये?
1: तो जैसे एक लड़की जब भी शादी करके किसी और कंट्री में जाती है, मैं 30 साल से अमेरिका में रह रही हूँ, एक वो होता है कि भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत प्यार वाली होगी, बहुत एक्साइटिंग होगी, फिर मेरी बेटी हुई, फिर मेरा बेटा हुआ, पर लाइफ ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि मेरी जो मैरिड लाइफ थी वो ब्रेक हो गई। बट उस टाइम आपको अगर मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल स्टोन हार्टेड हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अब तो लाइफ बिल्कुल खत्म है। पर जिस रात को मैं सोई हूँ और मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ, मैं अपने मंदिर में गई हूँ और मैंने अपने बच्चों के लिए भगवान से बहुत बात करती हूँ। आज की डेट में भी मैं 51 की हो गई हूँ, फिर भी मैं रोज भगवान से अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ अपनी जर्नल में। तो मैंने भगवान को बोला कि दो बच्चे दिए हैं आपने, बच्चे हैं आपके, डेस्टिनी आपने लिखी है, और क्योंकि मैंने आपको उस थ्रोन पे बिठाया है, इसलिए मुझे तो सिर्फ आप वो स्ट्रेंथ दो कि मैं आगे बढ़ूं और इन बच्चों के लिए खूब खूब काम कर सकूं, सो दैट मैं इनको एक बहुत अच्छी लिविंग दे सकूं। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप में अपनी मदर वाली स्ट्रेंथ पाती हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी 28 की थी जब वो सिंगल बनी और मैं भी 28 की थी जब मैं सिंगल हुई, और आप मानेंगी नहीं, मैं 13 इयर्स की थी जब ये हुआ और मेरी बेटी भी 13 इयर्स की थी। तो मेरे को तो ऐसे लगा तो जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पर वो कहते हैं ना कि आपको अपने इमोशन साइड पे करके अपने बच्चों को देखना पड़ता है, और मैंने भगवान से ऐसी एक पता नहीं एक वो अवेकनिंग मेरे में आई कि बेटी, अगर मैंने एक तेरे गाल पे थप्पड़ मारा है तो तेरे हाथ पे तेरे गाल पे एक हाथ भी रखा है, तो इससे तो फिक्र ना कर, मैं हूँ। और उस दिन के बाद चाहे मैं गिरी हूँ, चाहे मैं उठी हूँ, चाहे मैंने काम करा है, चाहे मैंने बिजनेसेस करे हैं, मैं पीछे मुड़के मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये देखा है कि मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे एक घोड़ा होता है ना, उसके लेफ्ट राइट में वो आगे अपने गोल पे रखता है, सेम चीज मैंने करी है कि अपने गोल पे मैंने फोकस करा है। और आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी बेटी मास्टर्स ऑफ न्यूरोसाइंस है, वो हेल्थ केयर में काम करती है, मेरा बेटा बैचलर ऑफ फाइनेंस है और वो एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ काम करता है। तो मैं एक अकम्प्लिश्ड वुमन हूँ बाय गॉड्स ग्रेस।
0: अमेजिंग मैम, अमेजिंग। आपकी फेथ और रेजिलियंस इतनी ब्यूटीफुल है आपकी जर्नी में, जिस तरह का आपका विश्वास है, जिस तरह का आपका रेजिलियंट एटीट्यूड है, ये सब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गॉड का ही मिरेकल है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, ये रेजिलियंस, ये बार बार खड़े होने की शक्ति, क्योंकि हर किसी में नहीं होती और बहुत लोगों में नहीं होती। इनफैक्ट 10 में से शायद 2 कोई होते हैं जो इस तरह की रेजिलियंट एटीट्यूड के साथ बड़े होते हैं, इस फेथ के साथ बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि आपको स्ट्रांगली ये एहसास होता है कि ये सब कुछ भगवान की देन है, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: जैसे कहते हैं ना कि बंदिया होप फ्री है और फेथ कभी सेल पे नहीं जाता, तो मेरा भी मोटो लाइफ का यही है। और आप मानेंगे नहीं, मेरे दोनों हाथ पे टैटूज हैं, एक पे होप है और एक पे फेथ है। मैं उसी के हिसाब से अपनी लाइफ लीड करती हूँ, एंड मेरी लाइफ इज नथिंग शॉर्ट देन अ मिरेकल। एंड मैं इसीलिए ये कहती हूँ कि एवरी डे जब मैं सुबह उठती हूँ और मेरे जिस भी कंट्री में मैंने मेरा घर है वहां पर एक मंदिर जरूर होता है, मैं जाके अपना सिर झुका के कहती हूँ शुक्राना कि आपने सोचा कि मैं इस वर्थ हूँ कि मैं फिर से आज उठ सकूं, अपने बच्चों की आवाज सुन सकूं और आगे काम कर सकूं और सोसाइटी को गिव बैक कर सकूं। तो मेरी लाइफ तो होप और फेथ के साथ ही लीड होती है, और मैं जो भी मेरे आसपास हैं, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे जिनको मैं कॉर्पोरेट सर्कल में मिलती हूँ, उनको यही मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो गिरोगे, जरूर गिरोगे। लाइफ एक यू नो ब्यूटीफुल ज्वेलरी का पीस नहीं है, वो ज्वेलरी भी बनने के लिए ठोका पीटी गई, आग में से गई, तब वो जाके ज्वेलरी कहलाती है। इसीलिए उस प्रोसेस और उस जर्नी को एंजॉय करो, उस लर्निंग को एंजॉय करो। आज की डेट में हम सब थोड़े ना वो इम्पल्सिव होते हैं, हम कहते हैं अरे या तो हम हार गए या हम जीत गए। मैं ये कहती हूँ आप जीत गए बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप हार गए तो वो हार नहीं है, वो एक लर्निंग है। उसको आगे रिपीट ना करें, उससे कुछ सीखें और फिर आगे बढ़ें। तो यही मेरी सबसे भी यही मैं कहती हूँ कि भाई आगे बढ़ो पर अपनी लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सब एक प्रोसेस हैं, प्रोसेस इन मेकिंग है, तो उस हार को भी गले लगाइए और उसकी सीख को सीख के आगे बढ़िए कि क्या जिंदगी आपको सिखाना चाहती है और कैसे आपको तराश रही है। बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे हो रही हैं भावना जी। दोस्तों, जब इंसान खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास रख लेता है तो रास्ते खुद खुद बनते चले जाते हैं। इसी जज्बे के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।

0: भावना जी, इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका वर्क बेबी है, तो आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि किस तरह से आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और क्या आपके लिए स्किल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या जिन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं उनका माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोच करते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कैसे आप ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपने बताया यूके, यूएसए, कनाडा और इंडिया में भी आप हजारों लोगों के साथ काम कर चुकी हैं और उन्हें ट्रेन कर चुकी हैं, उन्हें मेंटर कर चुकी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, आपके वर्क बेबी इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करें प्लीज।
1: जरूर। सो इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट 10 साल हो गए हैं मुझे इस कंपनी में। ये यूएस में हेडक्वार्टर्ड है, हमारे बहुत और ग्लोबल ऑफिसेज हैं कनाडा, यूके, पोलैंड, इंडिया। जब मैं इंडिया में इन्फिनिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आई थी 3 साल पहले, तो मेरा एक विजन था कि मुझे मेट्रो सिटीज में नहीं जाना है, मुझे मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, मुझे जाना सिर्फ टियर 2, 3, 4 सिटीज में है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि भाई मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मेट्रो सिटीज में आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिल जाता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी थिएटर में जाते हैं, आपको थोड़ा सा बात करने का लहजा, थोड़ा सा पहनावे का तमीज, सब कुछ आ जाता है, स्टोर्स ऐसे हैं आप उधर जाके लोगों को देखते हैं। पर छोटे शहरों में प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर वो एक्सपोजर नहीं है। और मेरा एक ये विजन था और प्रण था, आप कह लीजिए, कि मैं ऐसे छोटे शहरों में ही आऊंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि उन लोगों को, उन बच्चों को मैं ट्रांसफॉर्म करूं जिनमें टैलेंट तो बहुत है पर उनमें वो कॉन्फिडेंस की कमी है, उनमें वो अपने आप को तराशने की कमी है। इसीलिए मैंने यहां बरेली में अपना पहला ऑफिस सेट करा, और अब हम मथुरा में कर रहे हैं, मुरादाबाद में कर रहे हैं, पानीपत में भी आगे जा रहे हैं, हम फ्रेंचाइज मॉडल भी अपना इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हैं, हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके उनके वहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं। और ये सारा जो हमारा कल्चर जो हम बिल्ड करते हैं, ये सारा हमारा यूएस मेथोडोलॉजी के हिसाब से होता है, जिसमें प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, आपको कैसे तैयार करना है रियल वर्ल्ड के लिए। आप मानेंगे नहीं, जब आप एक कॉलेज से बाहर जाते हैं ना, तो वो एक पूरा कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र के लिए वो योद्धा कैसे तैयार करने हैं, मेरा फोकस उस पर रहता है। और मेरी टीम इतनी ज्यादा रिजिलियंट है और इतनी ज्यादा मेरे विजन को समझती है कि उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं, पर हम काम ब्लेसिंग्स के लिए ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो हम चार्ज करते हैं यूएस में, आपको अगर पता, अब सोचेंगे कि मैं यहाँ पर कितना चार्ज करती हूँ उस एक बच्चे की ट्रेनिंग के लिए, मतलब आप मानेंगे ही नहीं, जहाँ 4.5 लाख रुपए मैं यूएस में जो चार्ज करती हूँ, मैं इंडिया में छोटे शहरों में सिर्फ 5,000 रुपए चार्ज करती हूँ उस पूरे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को छोटे शहर में ये फील ना होए कि मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपने आप को एक डायमंड बनाने के लिए। तो ये है इन्फिनिटी।

0: पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि मैं आपके अंदर के उस चीज को तराश के ही रहूंगी, आपको डायमंड बना के ही रहूंगी।
1: हाउ ब्यूटिफुल मैम, हाउ ब्यूटिफुल, एंड कितना सुंदर विजन है, कितना गहरा और कितना सच्चा विजन है कि सच में जो ऑलरेडी मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं उनको वो सब एक्सपोजर, वो एज है एक्चुअली, बट एक्चुअल नीड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेट्स की टीयर टू टीयर वन सिटीज के बच्चों को है, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज के बच्चों को है, जिनके पास कहीं ना कहीं सच में टैलेंट है, बस सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने का जरिया नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई कैन इमेजिन कि आपकी टीम भी आपकी तरह ही रेजिलियंट होगी, क्योंकि आपसे बात करके मैं खुद इतना इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। तो आपकी जो टीम होगी वो कितना आपसे ड्रॉ करती होगी, कितना आपसे इंस्पायर होती होगी, आई कैन जस्ट इमेजिन। आगे चलते हैं और हमारे अगले और लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पे एक मैसेज मैं चाहूंगी कि आप, बिकॉज आप यूथ के साथ ही डील करते हैं, तो आज के यूथ में कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक वाक्या, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपके जहन में अभी आ रहा हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि किसकी किसी की लाइफ अगर आपने छुई हो और वो ट्रांसफॉर्म हुई हो, कोई एक एग्जाम्पल और उसके साथ साथ कोई एक मैसेज यूथ के लिए, बिकॉज आप उनकी प्रॉब्लम्स एकदम एग्जैक्टली समझते हैं, इतना गहराई से आप उनके साथ डील करते हैं, इतना क्लोजली डील करते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं आज की यूथ की। क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन्स बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं और करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो कैसे अपने आप को मनूवर करें, कैसे अपने आप को समझें और अपने पोटेंशियल को सही तरह से टैप करें, ये अगर आप हमें बता सकें।
0: ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट यू नो टॉपिक रेज करा है कि आज का जो यूथ है वो दिखाता तो है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट वो अंदर से इतना सहमा हुआ रहता है, इतना सेल्फ डाउट में रहता है, इतना उसको लगता है कि अगर मैं ज्यादा सब स्पेशली अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो आसपास वाले क्या सोचेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा एक क्लियर मैसेज रहता है आज के यूथ को, और मैं आपके जरिए से भी ये बोलना चाहूंगी कि जो आपको नीचे खींच रहा है वो ऑलरेडी नीचे है, आप उसके लेवल पे मत जाइए, आप अपने लेवल को देखिए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि आई कैन डू इट, आई कांट नहीं, कांट में भी कैन होता है, आई कैन डू इट, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, आपकी अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी और आपका जो सेल्फ डाउट है वो बिल्कुल डोर से बाहर होगा। और आप मानेंगे नहीं, इतने मैसेजेस आते हैं, इतने बच्चे हम लोगों को, मेरे को और मेरी टीम को मैसेजेस भेजते हैं, हमें यू नो हमें इन पर्सन आकर बोलते हैं कि आपने जो हमारे लिए करा है, जो आपने हमारे पे ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, वो हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे पास होगा। मैं आपको एक स्मॉल सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक लड़की थी, बहुत सहमी हुई थी, और ये मेरा अपने विटनेस करवे में एक लड़की है, यूपी बोर्ड से थी, बिल्कुल इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। हमारे 2 महीने के कोर्स उसके बाद उसको हमने ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताए कि वो पूरा पूरा पेज करके स्टेज पे 1000 बच्चों के सामने एक यूनिवर्सिटी में उसने आके एक फैशन शो करा। मतलब वो इतनी प्राउड फीलिंग थी हमारे लिए, इसीलिए। और कितने और बच्चे हैं जो स्टेज पे जाके, जो स्पेशली स्टेज फेयर बच्चों में बहुत होता है, और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और स्टेज सिर्फ एक 4 या 5 कदम का रास्ता है, उस 4-5 कदम के रास्ते को इतना बड़ा हवा ना बनाएं। उस जर्नी को हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने क्रॉस करना है।

0: बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि पैसा कमाना आसान है, ब्लेसिंग कमाना बहुत मुश्किल है। और आप जो ब्लेसिंग हमें देते हैं उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है और बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो मैं कहूंगी जितने भी बच्चे हैं जो अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं, आइए इन्फिनिटी आपको एक उस मुकाम पे लेकर जाएगा जो आप एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयबल पर्सन बन पाएंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी खूबसूरत बातचीत, तो बहुत ही क्लियर विजन है आपका और बहुत इंस्पायरिंग विजन है मैम आपका। आपसे बात करके ही लाइक आई सेड कि बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज हुआ है जिससे मैं भी इंस्पायर हुई हूँ और जो हमें सुन रहे हैं वो जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि जीवन में जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पका पकाया एनवायरमेंट मिले, सब कुछ सही मिले, बट आप अपने एफर्ट से, अपनी कॉन्शियस चॉइसेस से अपने जीवन को इस मुकाम पे ला सकते हैं कि आप अपना बेस्ट पोटेंशियल टैप कर सकें और उसे अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच भावना जुनेजा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर रंग के पीछे एक कहानी जरूर होती है और हर कहानी के पीछे एक हिम्मत भी जरूर होती है। आज की महफिल में हमने हमारे साथ भावना जी की सोच, उनके जज्बे को शेयर किया, जिन्होंने हमें ये याद दिलाया कि डर, संघर्ष और जिम्मेदारी ये सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग, गीतों के संग अपनी आरजे तनुषा तरानों की हमसफर के साथ। फिर मिलेंगे एक नए रंग के साथ, एक नए सफर के साथ। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है बॉलीवुड का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम मिलेंगे उन लोगों से जो पर्दे पर दिखते नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नाम जिनका काम है सही चेहरे को सही किरदार तक पहुंचाना, कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया। समीर जी ने फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, एड्स और शॉर्ट फिल्म्स तक में काम किया है। Z5, अमेजन प्रोजेक्ट से लेकर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स और डिजिटल कैंपेन्स तक इन्होंने न जाने कितने टैलेंट्स को स्क्रीन तक पहुंचाया है। आज हम जानेंगे कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, न्यू टैलेंट कैसे डिस्कवर होता है, राज कपूर के दौर से लेकर OTT रात तक कास्टिंग कैसे बदली है, और वो सवाल जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते हैं, कास्टिंग काउच की रियलिटी क्या है। तो तैयार हो जाइए एक बिहाइंड द सीन्स जर्नी के लिए, जहां हम समझेंगे फिल्मों की दुनिया का वो पहलू जो दिखता कम है लेकिन बनाता बहुत कुछ है। प्लीज वेलकम समीर पहाड़िया जी।
2: थैंक यू वेरी मच सर, और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और सभी जितने भी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। प्लीज सर कंटिन्यू।
1: तो समीर जी बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए, बचपन कहाँ बीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी जिंदगी की, कुछ बताइए उसके बारे में।
2: तो सर ऐसा है कि मेरी जो बचपन की शुरुआत है वो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसमें टीचर की फैमिली है। मेरे पिताजी बेसिकली रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट के, तो उनसे वो बचपन से ही हमें जो संस्कार और जो थ्योरी है ना, जो एक जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की, वो उनसे मिली है। पूरा घर का माहौल भी वही है कि मेरे बड़े भैया हैं जगदीश पाड़िया जी, वो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे छोटे हैं वो टीचर हैं, तो बेसिकली मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, और मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है, तो वही वाली बात है कि जब 3 डेट आई थी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करते हैं, तो वो चीज मैंने एग्जीक्यूट की, और वो सिलसिला इच्छा का सिलसिला था, और वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा कंटिन्यू हो गया, तो अभी वो सिलसिला बरकरार है।
1: चलिए बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि बचपन से ही फिल्म्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था, ये पैशन बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हुई?
2: बचपन में सर मैं डांस करता था, और मेरा ये मानना था, हाँ ये मानना था कि एक्टर जो होता है ना, जो फिल्म में पर्दे पे हम हीरो को देखते थे, उसकी लैंग्वेज मुझे ये पता थी कि डांस जो करता है वो हीरो होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फिर मुझे पता चला कि थिएटर ग्रुप है, थिएटर होता है, प्लेज होते हैं, और ये परफॉर्मिंग आर्ट में एक्टिंग बहुत मायने रखती है, सिर्फ डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बनते हो। तो फिर मैंने जयपुर के रविंद्र मंच है, वहां पे एक नाट्य कार्यशाला हो रही थी अंडर 20 एज की,

0: तो मैंने ज्वाइन की थी, वहां से मुझे पता चला कि नहीं यार, डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे इजी चीज लगती है सर देखने में एक्टिंग, और सबसे टफ वही होती है। तो वही है कि पैशन तो बचपन से मुझे डांस के थ्रू था, कि आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो मैं डांस बहुत अच्छा करता था बचपन से, तो उस बिहाफ पे मेरा वो इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, पता था नहीं कि क्या होता है कैसे होता है चीजें, ठीक है। धीमे धीमे वो है कि थिएटर में गया, थिएटर से बारीकियां सीखने की कोशिश की, और फिर पता चला कि एक्टिंग क्या चीज होती है, और फिर धीमे धीमे एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया।
1: तो आपकी मतलब स्टेज से भी आपका जुड़ाव रहा है जयपुर में, इसका तो ये मतलब था। तो आप
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं
1: पुराने लोग हैं, सरताज माथुर, ईश्वर दत्त और इन सबको जानते होंगे बिल्कुल अच्छे।
0: बिल्कुल मैं पर्सनली तो जानता ही हूँ, बाकी का साबिर खान सर हैं जयपुर से,
1: अच्छा हाँ साबिर खान
0: उनके मैं,
1: है।
0: हाँ, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली है, तो एक वर्कशॉप थी, फिर उसमें प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप थी, वो मैंने ज्वाइन किया, फिर काफी चीजें सीखी वहां से, फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखा। इवन जो साबिर सर हैं, मैं उनको हमेशा ये थैंक यू बोलता हूँ कि जो कास्टिंग का भी जो प्रोसेस है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थिएटर के डायरेक्टर है, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है कि वो अच्छे एक्टर की बजाय ना अच्छे कैरेक्टर ढूंढते हैं किसी एक्टर को, ठीक है। तो वो ही एक्चुअली कास्टिंग का प्रोसेस होता है। तो मैंने जब मैं थिएटर कर रहा था उसी दरमियान मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर हो, उस कैरेक्टर के लिए बेहतरीन एक्टर कौन हो सकता है ना, जिसमें वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा फिट बैठता हो। तो वही कास्टिंग की बेसिकली एक लीनियर लाइन जो होती है ना, उसमें हम लोग एक्टर कास्ट नहीं करते हैं अच्छे, हम अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते हैं।
1: अच्छा
0: तो वो मुझे वहां से वो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया, और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं आज धीमे धीमे मैं अपने प्रोसेस में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इसीलिए थिएटर मेरे लिए जिंदगी में मतलब एक बेस जो है ना, वो थिएटर ही रहा है, और उसी के बिहाफ पे इतना कॉन्फिडेंस है, और जो चीजें चल रही हैं प्रोफेशनली वो उसी बिहाफ पे है।
1: नहीं ये फायदा आपने बहुत अच्छा बताया। तो अच्छा ये बताइए, बॉम्बे मुंबई आप कैसे पहुंचे? क्या आप भी एक एक्टर बनने का सपना लेकर बॉम्बे आए थे, या शुरुआत से ही था कि भाई बिहाइंड द कैमरा ही मुझे काम करना है, यही मेरा इंटरेस्ट है? ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी बॉम्बे वाली?
0: जबकि मैं ये बताना चाहूंगा सर कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से कैमरा एक्टिंग एकेडमी है, कि जो कैमरे एक्टिंग की एकेडमी में जो सिखाते हैं ना, वो आप कास्टिंग की प्रोसेस में सीखते हो। क्योंकि हम हर दिन 50 लोगों के ऑडिशंस देखते हैं, अच्छे एक्टर के, बुरे एक्टर के, नए एक्टर के, पुराने एक्टर के, बड़े एक्टर के, हर तरीके के लोगों के 50 वेरिएशन देखते हैं हम लोग। हम लोग उस जजमेंट पे होते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता है। जो बेहतर एक्टर है उनसे भी हम ये बात करते हैं कि यार और बेहतर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक एक्टिंग की समझ है ना कि कैमरा क्या क्या चाहता है, वो आपको समझ में आ जाती है। और जब वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है कि कैमरा क्या चाहता है, तो जब आप खुद एज एन एक्टर काम करते हो ना, तो वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो उस समय तक झाल चुके होते हो उस प्रोसेस में कास्टिंग की, अदरवाइज आपको ये पता होता है कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है, मैं जो चाह रहा हूं सिर्फ वही नहीं हो सकता, डायरेक्टर क्या चाहता है, उसका पैटर्न क्या है उस स्टोरी का, वो कैरेक्टर की डिमांड क्या है, मेरा वॉइस टेक्सचर कैसा रहेगा, मेरी लैंग्वेज कैसी रहेगी, मेरी क्लास कैसा रहेगा, वो सारी नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे कास्टिंग प्रोसेस में काम करते करते आई। और मुझे ये लगता है कि मैंने पैरेलल एज एन एक्टर भी सर काम किया है, तो मुझे उस चीज में बड़ी हेल्प मिली है। कि शुरुआती दौर था जब मैं सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग कर रहा था ना थिएटर में, तो मुझे बड़ा डर रहता था कि कैमरे के सामने एक लाइन बोलना बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं कास्टिंग की प्रोसेस में बढ़ता गया, मैं कई लोगों के ऑडिशंस ले रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, फिर क्योंकि जब आप लोगों को बता रहे होते हो तो कहीं ना कहीं इनिशियली वो आपके अंदर भी वो चीज आती है कि आपको भी वो एग्जीक्यूट करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के लिए है वो थ्योरी।
1: सही बात, सही बात।
0: ठीक है, तो फिर उस वजह से मैं एक्टिंग भी कहीं ना कहीं और बेहतर कर पाया जितना मैं नहीं कर सकता था पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं पहले थिएटर से जुड़ा, फिर उसको मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी कास्टिंग की प्रोसेस में, एक्टिंग की प्रोसेस में, और कास्टिंग की प्रोसेस को फिर मैंने एग्जीक्यूट किया एक्टिंग में, तो मेरे लिए चार चीजें और बेहतर हो गई।
1: भाई मेरे ख्याल में तो आपने बहुत ही गहरी बात बताई है और बहुत ही मजेदार बात बताई है और हमें बड़ा मजा आया सुन के। दूसरा मुझे ये लगा है कि आपका ये मतलब है कि जो कास्टिंग का काम है और एक्टिंग का काम है दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ये कंटेंट सप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
0: डेफिनेटली
1: एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसी खूबसूरत बात के पे समीर जी रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं दोनों के सप्लीमेंट के नाम पे, और हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: तो वेलकम बैक समीर जी। तो आप ये बताइए कि आपका ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको लगा कि भाई नाउ आई हैव बिकम ऑफिशियली कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसा पहला काम कौन सा किया था?
1: सर मेरा जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको शुरुआत में ही बोला था मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ कुछ चीजों में, तो मेरा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो टर्टल फिल्म थी जिसको 2019 में नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरा एज ए डेब्यू कास्टिंग डायरेक्टर था, डेब्यू हुआ था उससे।
0: अच्छा।
1: और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि उसमें डायरेक्टर का भी डेब्यू था, प्रोड्यूसर का भी डेब्यू था और कितने एक्टर्स थे उनका भी डेब्यू था। और संजय मिश्रा सर थे, वो मेन लीड में थे।
0: अच्छा,
1: और अभी वो अमेजॉन प्राइम पे है वो, और Z5 दोनों पे वो रिलीज हो चुकी है वो फिल्म। और बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत फिल्म है सर। राजस्थान में ही हमने शूट किया था, जो जल संकट है ना जो, और उसमें ऐसा बताया गया था कि विश्व में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं जल की वजह से होगा। तो जो पानी का योगदान क्या है आपकी लाइफ में, लोगों की जनरल लाइफ में, उसको लेकर के, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो फिल्म थी। तो मैं, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो फिल्म देखें और प्लीज रिव्यू कीजिए कि आपको जरूर मजा आएगा देख करके।
0: और संजय मिश्रा जी तो बहुत ही आला दर्जे के एक्टर भी हैं सर, वो मैं भी बहुत इम्प्रेस। तो चलिए इसी बात पे, संजय मिश्रा जी की बात पे और जल संकट की बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ समीर जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा अब हम आपके मेन मुद्दे पर आते हैं और हम रुख थोड़ा सा आपके कास्टिंग डायरेक्टर के रोल पे कर लेते हैं। अब हमारे लिसनर्स के लिए सिंपल वर्ड्स में ये बताइए कि द कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए और फिर हम आपसे दो तीन सवाल इसी के बारे में पूछेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में।
1: तो बेसिकली सर, कास्टिंग का प्रोसेस कुछ समय पहले कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट ज्यादा उजागर हुई है। आई थिंक 15-20 साल पहले। उससे पहले कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो एक्टर्स को कास्ट करते
0: जी
1: थे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि 90s की जितनी भी फिल्में थी उसमें कैरेक्टर्स में जो एक्टर्स थे बड़े सिमिलर मिलते थे आपको। ठीक है कि अगर जॉनी लीवर एक दोस्त बना हुआ है तो जॉनी लीवर दोस्त बना रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी तरीके से मतलब जॉनी लीवर सर तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन और भी कई कैरेक्टर थे जो आपको अधिकतर फिल्मों में बड़ी सिमिलर से मिलेंगे कि ये भी है, ये भी है। 10 फिल्मों में उनके सेम कैरेक्टर मिले।
0: वकील और जज तो खास लोग ही बनते थे।
1: हाँ, फिक्स था कि ये तो पंडित ये बनेगा, ये वकील बनेगा और ये पुलिस वाला बनेगा, ये नेगेटिव करेगा। कास्टिंग जैसे ही प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हुई कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन लोगों ने नया टैलेंट सर्च करने की शुरुआत कर दी थी कि अब आप देखेंगे कि अगर 10 फिल्म में 10 कैरेक्टर हैं सिमिलर, तो 10 में एक्टर आपको मोस्टली वेरिएशन में मिलेंगे और उन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन जो भी है ना वो भी बड़ा ही वेरिएट होने को मिलेगा। तो हम लोग यही करते हैं कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम लोगों को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट है, हम लोग उसको रीड आउट करते हैं, हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में उस स्क्रिप्ट के नरेशन हम लोग सुनते हैं, तो उस कैरेक्टर को लेकर के हम लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं क्रिएटिवली कि क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो। कई बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये शायद पतला हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, ये काला हो सकता है, ये गोरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्टक नहीं होते हैं कि नहीं नहीं ये काला ही होगा, गोरा भी हो सकता। तो हम लोग एक तरीके से सर वैसा है कि होता है ना कि पतंग जब जाती है ना तो माजा फेंकते हैं, तो वो माजा कौन सी पतंग में आ जाए वो कट जाए ना, वो प्रोसेस है एक्चुअली। कि हम लोग बहुत फिक्स नहीं होते हैं कि नहीं नहीं यही एक्टर कर लेगा।
0: ओके ओके ओके
1: ठीक है, तो हम लोग एक कैरेक्टराइजेशन एक डायरेक्टर के थ्रू हम लोग क्रिएट सुनते हैं, फिर हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर हम लोग एक्टर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि अच्छे एक्टर कौन है और इस डायरेक्टली लुक में पर्सनैलिटी में कौन है, फिर हम उन दोनों का कॉम्बो वर्जन देखते हैं कि किसके ऑडिशंस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एट द एंड जो डिसीजन करते हैं ना हम लोग सर, वो करते हैं ऑडिशन पे। कि कई बार हम अपने आप को हमारी मेमोरी और हमारा जो डिसीजन है उसको हम लोग हमेशा साइड में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं जो जो ऑडिशन में होगा ना वो शाश्वत सत्य है। हम जो सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है कि बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर उसने अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ऑडिशन अच्छे नहीं है, तो हम लोग उसको साइड कर देते कि नहीं नहीं यार, इस कैरेक्टर के लिए अच्छे एक्टर हो सकते हैं लेकिन इस कैरेक्टर के लिए।
0: बड़ी गहरी बात है भाई।
1: पहली लाइन जो बोली थी ना कि हम लोग अच्छे एक्टर नहीं, हम लोग अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते।
0: तो ये कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन भी आप ही लोग कंडक्ट करते हो, ये ऑडिशन का प्रोसेस आमतौर पर कैसे चलता है, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे?
1: सर शुरुआत में तो जब डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था तो हम लोग मोस्टली ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, जो लोगों ने ऑफिस साइज बना रखी थी कास्टिंग कंपनी ने या प्रोडक्शन हाउस ने, तो लोग आ करके ऑडिशंस देते थे।
0: अच्छा।
1: और मुझे अभी तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफलाइन ऑडिशन ही लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली एक्टर से इंटरेक्ट होते हैं।
0: सही।
1: और जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस समझ को रखते हैं उस प्रोसेस में, तो हम लोग एक्टर को वो प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं डायरेक्टली कि सर डायरेक्टर क्या चाहता है। ठीक है, फिर हम लोग वहां से पूछते हैं कि एक्टर से कि आप क्या चाहते हो। तो जो डायरेक्टर और एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ना कि डायरेक्टर की वांट क्या है और एक्टर अपना क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में रखते हैं और फिर एक बेहतर ऑडिशन की तलाश में होते हैं कि वो ऑडिशन कितना खूबसूरत हो सकता है क्रिएटिवली।
0: वैसे मोटा मोटा तो आपने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब आप किसी रोल के लिए एक्टर चुनते हैं तो किन खास चीजों पर ध्यान देते हैं? लुक्स है, एक्टिंग स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, स्क्रीन प्रेजेंस है? आपने वैसे तो मोटा मोटा बताया ही है, लेकिन अगर यूं स्पेसिफिकली पूछे तो किन चीजों पर खास ध्यान देते हैं?
1: सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कैमरा फ्रेंडली हो एक्टर, अगर वो कैमरे के लिए काम कर रहा है।
0: ओके।
1: और उसकी लैंग्वेज, जो कैरेक्टर की डिमांड क्या है ना सर, उस पर डिपेंड करता है कि अगर किसी गांव का कैरेक्टर है तो उसकी लैंग्वेज बहुत बेसिक होगी, वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो कैरेक्टर किसी सिटी का है तो उसकी लैंग्वेज जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो एक सिटी के कैरेक्टर में होती है।
0: अच्छा,
1: तो मैटर ये करता है कि कई एक्टर को

0: मैं ये बात बता दूं सर पर्सनैलिटी को ही लेके, कि कई एक्टर बहुत ही बेसिक और बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब वो ऑडिशंस देते हैं या कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, वो बहुत क्लासी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा प्रोसेस बता रहा हूं सर, कि मैं कभी डायरेक्टली आंखों पे बहुत भरोसा नहीं करता। अच्छा। कई बार हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन जरूर होता है कि यार ये शायद उस कैरेक्टर में जा रहा है बढ़िया।
1: अच्छा।
0: फिर कैरेक्टर में वो जा रहा होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर करेगा। फिर हम लोग उस कैरेक्टर में फर्स्ट लुक से हम लोग इंस्पायर होके कि यार ये इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसका ऑडिशन करते हैं, फिर वो ऑडिशन में वो बेहतर करता है।
1: ओके।
0: तो हमारे लिए बेहतर एक्टर है। लेकिन आपको मैं वन लाइन में बोल दूं कि लुक बहुत मायने रखता है जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो ना। तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो आपका लुक होता है कि उस कैरेक्टर के नियर बाई आप कितना जा रहे हो।
1: हाँ, वो गांव वाला लुक है तो उसकी चेहरा अगर मोरा कुछ गांव वाला टाइप लगता है तो आपको प्रेफर करोगे आप उसके
0: लिए। हाँ, देखिए ना, अभी जैसे सास बहू फ्लेमिंगो मैंने राजस्थान की कास्टिंग किया था, आर्या के तीनों सीजन मैंने राजस्थान की कास्टिंग की थी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक चेहरे कास्ट किए हैं, जो जयपुर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं।
1: हाँ।
0: जिनका फेस उस तरीके से वो ऑथेंटिक दिखता है कि वो मतलब रफनेस है चेहरे के अंदर, ये रेगिस्तान के एरिया में जो चेहरे होते हैं। कई लोग फेयर हैं, लेकिन आप देखना कि जो रेगिस्तान के आसपास जो फेयर कलर के भी लोग रहते हैं, उनकी उनके चेहरे हैं वो बड़े ऐसे दबे हुए होते हैं, उनके गाल बहुत ज्यादा फूले हुए।
1: हाँ,
0: और वो कलर उनका गोरा होगा, लेकिन वो थोड़े थोड़े डॉट्स से बने हुए, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती है ना कि आपका गोरा चेहरा भी है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो एक लुक हो गया कि अगर किसी एक्टर का लुक इस तरीके का है ना, तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी ये चाहता है कि यार मुझे ऑथेंटिक मिल रहा है, तो मैं मेकअप वाले को क्यों परेशान करूं।
1: ओके।
0: तो जो कास्टिंग कहीं ना कहीं जो बेहतर किया है ना कास्टिंग की प्रोसेस ने सिनेमा में, वो किया है ऑथेंटिसिटी को।
1: ऑथेंटिसिटी
0: हम लोग डायरेक्टर को ऑथेंटिक लोग पहुंचाते हैं कि सर आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लुक पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसा का वैसा ही कैरेक्टर दे रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा एक्टर है।
1: यार ये तो बहुत ही गहरी बात बता रहे हो आप, मतलब
0: यस।
1: खैर वो मैं आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: उनको काउंट करते हैं, क्योंकि नॉन फेस होने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि वो बेहतरीन एक्टर है, क्योंकि न्यू कमर और जो नॉन फेस हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो भी कभी न्यू कमर हो रखे होते हैं।
1: हाँ सही बात है,
0: ठीक है। तो ये सिर्फ इस थ्योरी के लिए, मार्केटिंग के बिहार पे कहीं ना कहीं नॉन फेस बहुत मैटर करता है सर। और लेकिन कई बार कई जो डायरेक्टर हैं, कई प्रोडक्शन हाउस हैं जिनका स्पेसिफिक होता है कि यार मुझे नया एक्टर लेना है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा हो। हाँ, जैसे अगर आपने ये स्लमडॉग मिलेनियर में देखे होंगे, आपने सारे नए एक्टर मतलब शुरुआत उससे पहले आपने बड़े पर्दे पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर में नहीं देखा होगा जो लीड कर रहे थे।
1: हाँ, स्लमडॉग मिलेनियर में बिल्कुल नहीं थे, सब लोग नए नए थे।
0: हाँ, तो वही है कि उसकी वजह से वो फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैं अच्छा ऑडिशन किसको कहता हूँ कि एक्शन से लेकर के कट के बीच में जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमारे लिए अच्छा एक्टर है। उससे पहले उसने क्या किया है, कितना किया है, कितना अच्छा काम करता है, कहां से सीखा है, डजंट मीन सर। उस वक्त वो क्या परफॉर्म कर रहा है ना, वो मैटर करता है। उसी तरीके से पैरेलल जब वो सिनेमा के लिए काम कर रहा होता है तो सिनेमा में वो उसका कैरेक्टर कैसा प्रोजेक्ट होता है। अगर वो न्यू फेस है ना तो लोग और ज्यादा प्यार करते हैं उसको कि यार नया लड़का है यार, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग की थी इसने, जो विक्रम मैसी है उसने वो वाली पिक्चर।
0: विक्रम मैसी, यस यस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो शुरुआती दौर से, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से वर्किंग में हूँ, तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो न्यू फेस शुरुआत में उनका काम बहुत बेहतरीन रहा है सर। हाँ, उनको लोगों ने प्लेटफॉर्म उन्हें बहुत लेट मिला है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे नवाज सर हैं, इरफान सर हैं, ये लोग सर शुरुआत से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात। हाँ, लोग तो बहुत अच्छी थी बिल्कुल।
0: हाँ, लोग तो बाद में बोलने लगे हैं कि अरे यार देखो इरफान साहब अब बढ़िया काम करते हैं। अरे वो भैया वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे,
1: बिल्कुल सही।
0: लोगों ने अब जान पाए।
1: चलिए, तो इरफान सर के नाम पे आ गया तो कोई इरफान सर की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं यहाँ अपन रुक के।
0: ये तो बहुत खूबसूरत रहेगा।
1: बहुत अच्छा रहेगा। चलिए।

0: अब थोड़ा सा पुराने दौर की तरफ चलते हैं। आपने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल और आपने ऑथेंटिसिटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता दी। तो अब ये बताइए, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार का जो दौर था और वहां से लेकर आज के ओटीटी इरा तक, कास्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है उस जमाने से, बताइए इसके बारे में।
1: सर, एक तो क्या है कि जो बदलाव जितने भी हुए हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। सिनेमा वही रहा है, मतलब फिल्म मेकिंग की प्रोसेस वही रही है कि कितना आप चीजों को खूबसूरत प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग 1980s की फिल्में देखते हैं तो आज भी वो बहुत प्यारी लगती है, मतलब लगता है कि यार ये बिल्कुल कितने करीब है, जबकि टेक्नोलॉजी उतनी उस वक्त बेहतर नहीं
0: नहीं
1: थी
0: थी
1: जितनी आज है,
0: सही।
1: लेकिन ऑथेंटिस। हाँ, तो फिल्म मेकिंग में सर सिर्फ यही है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है ना, तो मुझे कई बार उस तरीके से डिफरेंस नहीं दिखता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस दिखता है, वरना ऑथेंटिसिटी तो सर पहले और ज्यादा बेहतर मिलती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोग थोड़ा सा उसको सुविधा मान लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पहले लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि उन्हें पता है कि नेगेटिव रील है, अगर वो शूट करेंगे तो आपका टेक बेवजह नहीं जाना चाहिए, तो बेस्ट पहले से ही वो प्री रिहर्सल उनकी बेहतर होती थी। अब शायद ऐसा हो गया है कि अब उन्हें पता है कि यार मेमोरी कार्ड ही तो है, ठीक
0: अच्छा,
1: है, तो वो डिलीट हो जाएगा डेटा, तो
0: राइट
1: एक और टेक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ना एक ये है कि इरिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है, लेकिन
0: राइट
1: ये भी है कि सुधार करने का मौका भी मिल गया है, कि एक चीज का फायदा होता है तो उसी का घाटा भी होता है सर, तो
0: सही।
1: ये
0: और
1: कि घाटा
0: कास्ट,
1: ही
0: हाँ, कास्टिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया है ये बताइए।
1: सर। कास्टिंग प्रोसेस में तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस ही कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गई है कि अब हम लोग मुंबई में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया से हम लोग एक्टर्स ले सकते हैं, कि व्हाट्सएप पे हम लोगों को कनेक्ट करते हैं कि भाई आप अपना इंट्रो भेजिए, अपना ऑडिशन वीडियो भेजिए, उनको ऑन कॉल हम समझा सकते हैं, इंस्टा के थ्रू हम
0: अच्छा,
1: लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे, लोग हमें दूर दूर
0: ओहो,
1: से जो इंडिया के कॉर्नर पे रह रहे हैं वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि मुंबई आना पड़े।
0: हो, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। तो वो वीडियो बना के भेज देते होंगे आपको। अच्छा,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब से ये
0: ओके।
1: इंटरनेट की सुविधा बेहतर हुई है ना, तब से तो ऐसा हो गया है सर कि हम लोग एक जगह बैठ करके, जैसे मुंबई में बैठे हैं और मैं जयपुर की कई प्रोजेक्ट की कास्टिंग करता हूँ, एक एक दिन में 20-20, 30-30 ऑडिशंस मंगा लेते हैं,
0: ओके,
1: तो
0: अच्छा।
1: कहीं ना कहीं वो सुविधा तो हुई है सर। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि नए नए टैलेंट आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ के जो बैरियर थे ना कि हर कोई मुंबई
0: हाँ,
1: नहीं आ सकता,
0: डिस्टेंस का बैरियर और टाइम का बैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल
1: वो खत्म हो गया है सर। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग और ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल, एक अलग चीज हो गई जो मैंने बताया, लेकिन जो लोग एक्टिव हो सकते हैं ना वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि यार अभी मुझे सिर्फ 4 एक्टर नहीं देखना मेरे कैरेक्टर के लिए, अब मैं 40 भी देख सकता हूँ, 400 भी देख सकता हूँ, 4,000 भी देख सकता हूँ, तो अब
0: बिल्कुल
1: मेरे
0: सही।
1: पास जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो और नीट एंड क्लीन हो गया है।
0: चॉइसेस बढ़ गई हैं आपकी, बहुत
1: यस
0: चॉइसेस,
1: यस चॉइसेस वही है कि सिलेक्शन बेहतर तभी हो सकता है जब ऑप्शंस होंगे सर।
0: ऑप्शंस है, बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हो गए
1: हाँ,
0: आपके पास।
1: क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं एक मॉल खड़ा कर दिया है कि जहां आपको एक ही जगह पे सारी वैरायटी मिल जाएगी, आप
0: बिल्कुल, ये
1: सेलेक्ट
0: बड़ी
1: करो कि आपको चाहिए क्या।
0: बड़ी बात है। एक मॉल में जैसे हम जाके, आपको मल्टी ब्रांड चीजें मिल जाती है, आपको हर चीज मिल रही है वहां वहां। बिल्कुल सही
1: आप
0: बात।
1: देखो ना, आप दुकान पे जाते हो, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, याद आ जाएगा तो आप दो प्रोडक्ट खरीद लोगे, आप मॉल में
0: बिल्कुल।
1: एक बार जाइए सर, आप खरीदने दो प्रोडक्ट जाएंगे लेके 20 आएंगे, तो
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल
1: वो
0: सही
1: सही
0: बात।
1: बात है।
0: अच्छा, अब ये बताइए, जैसे कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं आपके यहाँ तो आजकल बड़े बड़े, तो और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से कास्टिंग सिस्टम में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया होगा, कुछ उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे क्या हो रहा है ये कॉर्पोरेट हाउसेज आने से।
1: सर वही है कि ओटीटी की वजह से ये है कि काफी वेरिएशन आया है, कि जो आप नॉन फेस और जो न्यू फेस की बात कर रहे थे ना, कि सिनेमा में एक
0: हाँ,
1: लिमिटेड स्क्रीन्स हैं, तो उन लिमिटेड स्क्रीन में आपको लिमिटेड एक्टर्स के लिए भी वो अवेलेबल होती थी। ओटीटी ने अब ये कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर जो बेहतर एक्टर है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, उसको कम लोग जानते हैं, अगर वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर और वो एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं।
0: देखना बिल्कुल सही बात।
1: मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, कितनी ऐसी फिल्में हैं जो 10 साल पहले रिलीज हुई थी, तब उन्होंने किसी ने पूछा नहीं उनको, और लोग वापस से रिटर्न होकर के आ रहे हैं कि यार ये क्या कमाल का काम किया इन्होंने। और उन एक्टर को वापस से एक तवज्जो मिल रही है जिनको लोग कहीं ना कहीं जानते भी नहीं थे और भूल गए थे।
0: भूल गए थे
1: पसंद किए, ऑडिशन किए। मैंने भले 20 लोगों के ऑडिशन किए, 50 लोगों के, मुझे उसमें से 5 लोग अच्छे लगे कि ये कैरेक्टर में बेहतर है, ठीक है मैं उनको डायरेक्टर को दिखाऊंगा। ठीक है, डायरेक्टर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि यार अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दोनों चीजें बता देगा। कई बार बोलेगा यार ये 5 में से 2 अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और हो सकता है एक्सप्लोर। हम लोग वापस से एक्सप्लोर करते हैं कि फिर वापस से 20 लोग का, 30 लोग का, 50 लोग का, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वापस से ऑडिशन करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। फिर डायरेक्टर आगे जो चाहे प्रोड्यूसर को हो या चैनल को होता है, जैसे अभी चैनल का ओटीटी में चैनल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, चैनल अपनी तरफ से आप एक अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस देते हो, चैनल फिर बताता है कि नहीं नहीं यार इस पे आप सही जा रहे हो, या अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है ना उसको आपको चैनल को एक बार दिखाना होता है।
0: अच्छा अच्छा ये बात।
1: तो अभी ऐसा है कि अब वो वन साइडेड कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने चाहा कि मुझे इसी एक्टर को लेना है, ठीक है। तो वो कई बार चीजें कम हो गई है कि अब ये है कि अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो आगे तक अच्छा ही लगेगा सब। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें फेयर हो गई हैं कि आपके इंडिविजुअली एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बोल दिया डन तो डन हो गया, नहीं होगा। हाँ, और जो जेन्युइन काम करते हैं अच्छे लोग, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इवन ये होते हैं कि वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं, 8-10 लोगों की टीम के साथ, और सामने बैठ के टीवी पे या स्क्रीन पे ऑडिशन चलते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर से डिस्कशन होता है कि बताओ क्या, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसकी ये खासियत है, इसका पहले की ट्रेनिंग ऐसी है, ये कैरेक्टर में ये ऑडिशन अच्छा है, ऑडिशन के अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी 4 चीजें एड ऑन क्या है वो सारी बताता है, फिर टीम वाले बताते हैं कि नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा है तो अच्छी बात बता देते हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं सर एक फाइनल डिसीजन तो कहीं ना कहीं जो कोर टीम होती है उन्हीं का होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसको मैं फाइनल डिसीजन वन साइडेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। मतलब डायरेक्टर कई बार हमसे भी पूछता है कि यार तुझे कौन सा लगता है जो बढ़िया कर जाए, क्योंकि तू एक्टर को ज्यादा बेहतर जानता है पर्सनली, ठीक है। तो हम लोग कई बार सजेस्ट करते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टर उनको पसंद करता है, उनको फाइनल करते हैं।
0: अच्छा अभी बताइए, जैसे एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं या आप लोग एक्टिवली टैलेंट सर्च करते हैं, तो आपके पास कहाँ से ये रॉ मटेरियल आता है?
1: सर ये क्या है, म्यूचुअली होता है कि हम लोग जनरली हमारे एक नंबर प्रोवाइड होते हैं या स्टूडियो होते हैं जहाँ पे लोग रैंडमली विजिट कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं,
0: प्रोफाइल भेज सकते हैं,
1: ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग पेज पे डालते हैं कि भाई आप हमारा नंबर ये है तो आप अपनी प्रोफाइल भेजिए, तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोफाइल होती है उनको हम लोग वापस से मैसेज करते हैं कि आपके लुक में एक कैरेक्टर है तो प्लीज ये डिटेल्स है, आप इसके बारे में हम जानकारी जो आपको चाहिए वो देते हैं, आप ऑफलाइन ऑडिशन देने आ सकते हो, आप आ जाइए, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन आपका मंगा सकते हैं। और किस और वही है कि पहले कई बार एक्टर करते हैं, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, हमारे पास जो प्रोफाइल है अगर उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही ना, फिर हम लोग मैसेज सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, अपने कास्टिंग वालों से एक वो बोलते हैं कि यार मुझे आगरा की लैंग्वेज का एक एक्टर चाहिए, तो उस साइड पे कोई जानकार है क्या जो एक्टर हैं, तो इस तरीके से सर्चिंग बड़ी पैरेलल चल रही होती है सर।
0: तो अच्छा, कोई स्टोरी की इम्पोर्टेंस होती है इस सारे प्रोसेस में के कास्टिंग करते समय, स्टोरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है?
1: हाँ,
0: तो आपको भी स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले कास्टिंग से पहले?
1: हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट सही होती है, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग रीड आउट करते हैं उस पूरी स्क्रिप्ट को.
0: अच्छा.
1: और फिर हम लोग कई बार हमारी कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, हम डायरेक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं करें, क्योंकि एक्टर को भी हम लोग कन्विंस तभी कर सकते हैं ना.
0: सही बात
1: है. जब हमें उस स्टोरी के बारे में ज्यादा बेहतर बताऊं
0: तो समीर जी काम तो बड़ी मेहनत का है आपका भाई. मैं इंप्रेस्ड. बहुत मेहनत का काम है. और फिजिकली भी मेहनत है, मेंटली भी बहुत मेहनत है, हर तरह से बहुत मेहनत है.
1: सर जब कास्टिंग चल रही होती है ना सर, उस वक्त हमें सच में नहीं पता होता. मतलब हमें भी लगता है कि एक्टर्स की भी कई शिकायतें होती हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन आप ये समझ लो सर कि हमारी वो स्थिति होती है कि जैसे शादी में दूल्हे की होती है ना स्टेज पे. तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो हमारी वो दूल्हे वाली स्थिति होती है कि उस वक्त हम लोग वो नहीं कर सकते कि हमें काम निकालना होता है. हम उस वक्त इमोशंस पे नहीं होते, तो कई बार हमें दुख भी होता है, क्योंकि एट द एंड सर ह्यूमन ही है. और मैं भी एक्टर हूं तो उस बात को और बेहतर समझता हूं.
0: कई बार ब्रश असाइड कर देते होंगे आप लोगों को, यार चलो नहीं ये नहीं है, उसका बेचारे का दिल टूटता ही होगा नेचुरली.
1: सर आप ये सोचो ना कि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं एक एक दो दो दिन. कई बार घर वालों के जब हम खुद के इमोशंस को साइड कर रहे हैं तो फिर बाकी के इमोशंस तो, क्योंकि वो काम का है ना सर. वो हमारी काम के लिए ईमानदारी है. वो गलत है कास्टिंग डायरेक्टर का कि आप खाली बैठे हो, कोई आपके सामने से मिल रहा है, फिर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, गाने सुन रहे हो, तब आप बात नहीं करो. वो एक अलग बात है. लेकिन काम के दरमियान ऐसा होता है कि काम के दरमियान आप चाहके भी नहीं बात कर सकते. वही वाली बात है कि दूल्हे दूल्हे दूल्हा जब दूल्हे की शादी होती है ना, तो उस वक्त तो भले ही उसके कितने भी खास दोस्त हैं, वो एक घंटा नहीं दे सकता ना सर उनसे.
0: सही बात है. सही.
1: वो उस वक्त पहले ही बोल दिया होता है कि यार सुनना, मैं उस वक्त व्यस्त रहूंगा, शादी में आना ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना.
0: आना और खाना खाना और चले जाना.
1: मिलके जरूर जाना.
0: मिलके जरूर जाना. हाँ समीर जी, अब ये बताइए कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें इतना सारा ये प्रोसेस बता दिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहां आपने किसी नए टैलेंट को डिस्कवर किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने इंट्रोड्यूस किया हो फिल्म इंडस्ट्री को, कुछ उसके बारे में बताइए.
1: सर मेरे लिए सबसे खूबसूरती की बात यही है कास्टिंग प्रोसेस में, कि मुझे नए फेस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मुझे लगता है कि यार मैं कुछ मेरे लिए काम कर पा रहा हूं, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है, एस्टेब्लिश एक्टर है, नोन फेस है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ही करेगा ऑडिशन, नो डाउट, क्योंकि उसका खुद का ही एक्सपीरियंस इतना है. लेकिन एक नए फेस को एक्टिंग ऑडिशन वाले प्रोसेस में कराना और डायरेक्टर को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है सर. और मेरी किक एक्चुअली, मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हें किक किस में मिलती है, तो मुझे किक एक नए एक्टर के साथ में अच्छा ऑडिशन कराने में कितनी होती है.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा.
1: हाँ, तो मैं बड़ा ही मजा, मतलब एंजॉय करता हूँ. जैसे एक कटल में एक बच्ची है, अमिया नाम का कैरेक्टर है, अगर जिन्होंने भी वो फिल्म देखी हो.
0: अच्छा.
1: तो वो उसकी लाइफ का पहला ऑडिशन था और पहली बार वो एक्टिंग भी शायद 2-3 महीने पहले उसने थिएटर ज्वाइन किया था जयपुर में.
0: अच्छा.
1: और वहां पे वो ऑडिशन देने के लिए आई थी रैंडमली, तो मैंने पहला ऑडिशन लिया. तो मुझे भी लगा कि यार अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, कैमरा फ्रेंडली होना. लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार आप बिलीव करते हो कि यार लेट्स ट्राई ना, एक्सप्लोर करते. दूसरा टेक लिया, पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, तीसरा लिया, चौथा लिया, एट द एंड कुछ 8-10 टेक हुए थे.
0: अच्छा.
1: हाँ, और वो 8-10 टेक में ये हो गया कि अब बेस्ट मिल गया है.
0: ओके ओके.
1: हाँ, और अजीब बात यह कि उसके साथ में जो मैंने 4 लोगों के ऑडिशंस किए, वो लोग फाइनेस्ट एक्टर थे ऑलरेडी.
0: ओके ओके.
1: हाँ, लेकिन एक होता है ना कि एक रॉनेस जो होती है किसी एक्टर में, वो नेचुरली होती है ना. तो वो फिर आगे मैंने ऑप्शंस भेजे और फाइनली, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ना.
0: हाँ.
1: कि शायद यार इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. और फाइनली ये हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली जयपुर रहते हुए ही मुंबई से. कि जो लोग मुंबई में 5-5 साल रह के पूरी नहीं कर पाते, और अभी वो शिक्षा एंटरटेनमेंट के जो चाइल्ड सुपर स्टार है उसमें उसको काउंट किया जाता है सर।
0: सही बात है, तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह का पुण्य का काम है साहब, आपने मतलब एक रॉ पत्थर को तराश के हीरा बना देते हो अगर इस तरह से कहूं।
1: मतलब बहुत दुआएं मिलती है सर, बहुत दुआएं,
0: बहुत दुआएं,
1: बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है सर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बचपन में मेरी फैमिली के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला है, दोस्तों के थ्रू बहुत प्यार मिला है, और जिस करियर में हूँ, जिस मैं पोस्ट पे हूँ ना, उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है सर। प्यार के अलावा दुआएं बहुत मिलती हैं,
0: लोगों की आंखें भीग जाती होंगी साहब जब आप उनको ऐसा चांस देते होंगे। मैं तो
1: सर कितना अच्छा लगता है कि किसी के मैंने ऑडिशंस किए उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि यार प्रोसेस क्या होता है ऑडिशन का। ठीक है, कोई मेरी 3 दिन की वर्कशॉप करता हूं मैं, जिसमें मैं ऑडिशन की प्रोसेस के बारे में बात करता हूं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: लोग वहां से सीख के जाते हैं और कहीं उनका 1 साल बाद 1.5 साल बाद 2 साल बाद कहीं सिलेक्शन होता है। अच्छा। फिर उनका वो पहली बार मैसेज आता है कि सर मैंने आपसे वहां से ऑडिशन का प्रोसेस सीखा, उसको मैंने कंटिन्यू किया और मुझे प्रोजेक्ट मिला है सर, थैंक यू वेरी मच।
0: याद तो करते ही होंगे आपको, बिल्कुल सही बात।
1: हाँ, तो वो वैसा है कि वो ब्लेस्ड है सच में।
0: अच्छा, अब थोड़ा सा जिस विषय पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी, कास्टिंग काउच के लेकर बहुत सारी बातें होती है, तो ये प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर, आप इस रियलिटी पे क्या कहना चाहेंगे? मिथ है, ट्रुथ है, या हाफ ट्रुथ है, या हाफ मिथ है, कुछ इसके बारे में बताएं।
1: ये उसी तरीके से है कि भगवान होते हैं, शैतान होते हैं। ठीक है, देखा किसी ने नहीं है सर। ठीक है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे रात को भगवान दिखे थे, और कई लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखा था। तो यही है कि ये होता है, सिर्फ मानने पे है। ठीक है, ये वही थ्योरी है, जैसे मुझे 7 साल हो गए सर, मैंने नहीं देखा कभी।
0: अच्छा,
1: ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जैसे वो बच्ची को कास्ट किया था मैंने, कई सीरीज में मैंने लीड एक्टर भी कास्ट किए हैं जिनका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था।
0: ओके,
1: तो कहीं ना कहीं मैं जिस प्रोसेस पे चल रहा हूं ना, मैं उसी पे बिलीव करूंगा सर। और मैं लोगों को भी यही समझाता हूं कि आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। यही है कि, और कई लोगों के लिए सर कास्टिंग काउच इतनी ज्यादा प्रभावी है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार इसके बिना काम ही नहीं मिलेगा। और मैं ये बोलता हूं कि यार मैंने पिछले 5-7 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं ये तो एग्जीक्यूशन वाली बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपोल कल्पना बोल रहा हूं, कि मेरा कोई इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट नहीं है कि मैं कास्टिंग वाला होकर के मैं जुगाड़ लगा करके किसी का सिलेक्शन करवा रहा हूँ। जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेरे रिश्तेदार नहीं है, जानकार नहीं है, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही है ना कि आप अच्छा ऑडिशन दो, आप कास्ट हो जाओगे, दैट्स इट। तो कास्टिंग काउच तो वो है।

0: सिर्फ होता है ना कि हर जगह चाकू के दो काम होते हैं, या तो आप उससे सलाद काट लो, सब्जी काट लो, फल काट लो, या फिर किसी का गर्दन काट लो। तो इट्स डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन सर। और मुझे तो ये लगता है कि जब भी मैं किसी नए फेस को, स्पेसिफिक लड़कियों को, मैं अगर किसी अच्छे कैरेक्टर में कास्ट करता हूं ना सर, तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं होती कि मैंने एक एक्टर कास्ट किया है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो एक लड़की है ना, वो पांच लड़कियों को ये बताएगी कि भाई कोई कैरेक्टर पाने के लिए आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत है,
1: अच्छा
0: आपको
1: काम
0: आपके
1: करने की
0: काम
1: जरूरत
0: के बिहाफ पे काम मिल जाएगा। और वो पांच लड़कियां और भी पांच लोगों को बताती है, तो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है कि अगर कोई नया फेस है ना और वो अच्छे कैरेक्टर में जाता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सर इस मिथ को, लोगों की जो मिथ बनी हुई है ना थ्रू आउट, ठीक है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वही है कि जब आप बेहतर टैलेंट देते हो ना तो फिर सारे एक्सक्यूज साइड में हो जाते हैं सर। और आप देख लो कि आज इंडस्ट्री में जो टॉप 10 लोग हैं सीरीज में खासकर, वो लोग हैं जिनका इंडस्ट्री का में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सब सब लोग उसी तरीके के हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट है वो बहुत मायने रखता है।
1: चलिए, बहुत ही बढ़िया तरह खूबसूरती से आपने जवाब दे दिया इस ट्रिकी से सवाल का, मजा आ गया। तो अब हम करीब करीब समीर जी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो हर साल कई यंगस्टर ड्रीम्स लेकर मुंबई आते हैं, उनके लिए आपका क्या ऑनेस्ट मैसेज है, हालांकि अभी आपने बताया?
0: ऑनेस्ट मैसेज तो यही है कि जितना बेहतर हो सके कॉन्टेक्ट बनाने की जगह क्राफ्ट पे काम कर लें, और ऑडिशन का जो इम्पोर्टेंस है ना उसको जितना आप बेहतर समझ लोगे ना कि आपको एक्टिंग आने के साथ साथ एक अच्छा ऑडिशन भी आना चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं एक रोल दिलाने में मतलब सबसे बड़ा योगदान है एक अच्छे ऑडिशन का। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर कैमरे पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे पर ही करनी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़ते हो, आप थिएटर करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपका कहीं ना कहीं उससे बेस क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल थिएटर करो या 5 साल बुक्स पढ़ो और उसके बाद आप सीधा कैमरे के सामने आओ और आप कुछ कमाल कर दोगे, नहीं कर पाओगे सर।
1: ओके,
0: आपको पैरेलल ये सारी प्रोसेस रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस कैमरे पे भी करनी पड़ेगी अगर आपको सिनेमा के लिए काम करना है।
1: बड़ी गहरी बात कह दी आपने यार समीर जी, मजा आ गया इस बात में आपकी, मतलब ये जो मैसेज
0: है वो आपकी आपकी वाइब इतनी अच्छी है ना कि मेरे अंदर से अपने आप कुछ अच्छी बातें आप निकाल रहे हो,
1: आप
0: जैसे हम लोग एक्टर से निकालते हैं।
1: कैमरे पे एक्टिंग, कैमरे के सामने एक्टिंग करना, ये काम इट इज डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये मतलब भले ही आप स्टेज एक्टर कितने अच्छे हो, कितने अच्छे सिंगर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप जब तक कैमरे से आपकी दोस्ती नहीं हो, संजीव कुमार के लिए कहा करते थे वो एक उसमें ही जाने कितने वो कर देते थे, उसके लिए बताते थे लोग बात, बिल्कुल सही।
0: क्योंकि ये सर ये वही वाली बात है कि आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया ना तो बेस तो वही है, इंजन का बेस ही है, रेस है, क्लच है, आपको स्टार्ट कैसे करनी होती है, प्रोसेस सेम है, कार का भी सेम है, ट्रक का भी सेम, जीप का भी सेम है, लेकिन आप बाइक चला के आप कार डायरेक्टली स्पीड से नहीं चला सकते, तो आपको कार चलाने के लिए कार भी सीखना पड़ेगा बैठ कर,
1: कार भी।
0: तो वही ये है कि थिएटर जो है वो कहीं ना कहीं बेस है, वो इंजन है एक तरीके से जो आपको पावर देता है, लेकिन अगर आपको जितनी वेरिएशन की आपको गाड़ी सीखनी है तो आपको उसको चलाना ही पड़ेगा सर। तो वही कैमरे के ऑडिशन का प्रोसेस है कि आपको कैमरे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो वर्कआउट हो पाएगा। यस
1: बिल्कुल, आपको कैमरे के सामने सहज होना, कैमरे से दोस्ती होना और कैमरा कॉन्शियस ना होना, तीनों चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट।
0: मतलब एक टैगलाइन देता हूँ सर मैं हमेशा
1: जी
0: अपनी वर्कशॉप में
1: जी,
0: कि बेसिकली कैमरा घोस्ट होता है।
1: ओके,
0: कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है, जो लोग 1 लाख लोगों के सामने बोलते हैं ना जब वो कैमरे के सामने आते हैं सर, मैंने इतने लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते हैं सर, गला सूख जाता है उनका,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो कैमरे को घोस्ट बना, घोस्ट है कैमरा, उसको जब तक आप दोस्त नहीं बनाओगे
1: वाह,
0: तब तक आपका आप एक्टिंग जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग क्या है कैमरे के लिए, जब तक वो कैमरा आपका दोस्त नहीं बनेगा ना तब आपकी शुरुआत होगी एक्टिंग की, कि यार चलो अब कुछ करते हैं, तो पहले तो आपको दोस्त बनाना पड़ेगा कैमरे को।
1: मजा आ गया साहब, मजा आ गया। आपके दोस्त और घोस्ट वाली बात तो बस लाख टके की बात है, यही कहूँ लाख टके की बात है। तो चलिए, मैं तो अब बस आपसे आखिरी एक छोटी सी बात कर रहा था कि अगर एक फिल्म कास्ट करनी हो समीर पहाड़िया जी को, तो रियल लाइफ स्ट्रेंजर्स में आपको करेक्टर ढूंढने, टैलेंट ढूंढने आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन पे ढूंढेंगे, थिएटर ग्रुप में ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अगर आपको अपनी एक फिल्म कास्ट करनी हो तो?
0: सर मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा जब तक मुझे बेहतर ऑप्शन मिले।
1: चलिए
0: तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इतने अप्रोक्सीमेट होते हैं कि हम लोग अपने आपके सिलेक्शन को जैसे सबको बताएंगे, थिएटर ग्रुप में जाएंगे तो थिएटर में एक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कैरेक्टर चाहिए कालबेलिया वाले लोग, तो हम लोग कालबेलिया वालों के पास जाते हैं हम लोग। जैसे कई बार वो रस्सी पे चलते हैं, उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रीट कास्टिंग बोलते हैं लैंग्वेज में। तो हम लोग ऐसा है कि जब तक हमें बेहतर कैरेक्टर नहीं मिल जाता ना, हम लोग हर जगह जाते हैं सर, लोगों को मैसेज करते हैं। अगर हमें आसाम का कोई एक्टर चाहिए तो आसाम का जो हमारा रिश्तेदार भी होगा ना, उससे भी हम लोग कॉल करके, जिससे हम कभी एक साल में बात नहीं करते हैं ना, उससे भी हम लोग कॉल करके पूछ लेते हैं कि और बताइए सर क्या हालचाल, बढ़िया यार, उधर कोई थिएटर वगैरह है क्या, कोई एक्टिंग वर्किंग करता है तो कोई जानकारी हो तो नंबर दो ना।
1: चलिए,
0: तो आप समझ रहे हो ना कि जितना एक्टर हमें अप्रोच नहीं करता उससे ज्यादा हम लोग एक्टर को
1: अप्रोच करते हैं। मजा आएगा। चलिए तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया जी के साथ। आज हमने जाना कि फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में कास्टिंग सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां कहानी, किरदार और इंसान तीनों को जोड़ने का काम होता है। समीर जी ने यह भी बताया कि स्ट्रगल रियल है, लेकिन टैलेंट, पेशेंस और प्रोफेशनल से रास्ते बनते हैं। न्यू कमर्स के लिए उनका साफ संदेश है, ड्रीम बिग बट कम प्रिपेयर्ड। हम उम्मीद करते हैं आज की बातचीत आपको फिल्म इंडस्ट्री को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। मैं समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की।
0: सर मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैं मतलब मेरे अंदर जो इतनी सारी चीजें थी ना, उनको आपने बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है, तो थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जितना आप बेहतर से जी सकते हो जी लो, क्योंकि कल पता नहीं है क्या हो जाए।
1: चलिए चलिए, तो अगर आप भी एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं तो याद रखिए, सही टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता, बस सही मौका और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग, गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ, तब तक सपने देखते रहिए, मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सुने सरसाए साप सुने सरसाए साए साए सुरमा सासा संग समाए समय सबक समझाए खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों सायरा बानो जब 16 साल की थीं तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।

नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय, रेडियो एसएन और रेडियो तांतिया भील 90.8 एफएम पर। और आप सही समझे हैं, आज के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के इस एपिसोड में हमारे खुसूसी शायर हैं शकील बदायूनी। अभी हाल ही में 20 अप्रैल को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। सूरत और सीरत से इस खूबसूरत से शायर का जन्म 3 अगस्त 1916 को हुआ था। शकील साहब का इंतकाल सिर्फ 53 साल की उम्र में 1970 में ही हो गया था। उनकी 53 ईयर्स की जिंदगी में हिंदुस्तान 31 साल तक एक स्लेव नेशन था, जबकि उस दौर के तकरीबन सभी शायरों ने गरीबी, मुफलिसी, बेइंसाफी, गुलामी और आज़ादी के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन शकील साहब एक मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक थे। वो अपनी अलग ही दुनिया में जीते थे, जिसमें मोहब्बत, इश्क, वफा, उल्फत का ज्यादा बोलबाला था। खुदा के नेक बंदे होते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बहुत खूबसूरत भजन भी लिखे थे दोस्तों। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं शकील साहब की मशहूर गजल, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। मलिका गजल बेगम अख्तर की पुरसुकून आवाज में, शौक फरमाए।

ये फलक फलक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, ये फलक फलक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, वो नजर भी क्या नजर है जो न समझ ले इशारा। मुझे आ गया यकीन सा, यही है मेरी मंजिल। मुझे आ गया यकीन सा, यही है मेरी मंजिल। सरे राह जब किसी ने मुझे दफ्तन पुकारा, कोई आए शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है, के उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। मेरी जिंदगी है जालिम, मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आशकारा। तेरा गम है दर हकीकत, मुझे जिंदगी से प्यारा। दोस्तों, रफी साहब की पुरकश आवाज में ये दर्द में डूबी कहानी सुनिए। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा।

चाहिए खुद पे यकीन ए कामिल, चाहिए खुद पे यकीन ए कामिल। हौसला किसका ढाता है कोई, सब करिश्माते तसव्वुर हैं शकील, सब करिश्माते तसव्वुर हैं शकील। वरना आता है न जाता है कोई, आंख से आंख मिलाता है ना कोई, दिल को खींचे लिए जाता है कोई। दोस्तों, शकील साहब की नॉन फिल्मी गजल को लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज में इसको गाया है, आप भी सुनिए। आंख से आंख मिलाता है ना कोई, दिल को खींचे लिए जाता है कोई।

पूछेंगे हम किसी से रास्ता तेरा, अब ना पूछेंगे हम किसी से रास्ता तेरा। बहुत भटक लिए हम तेरी तलाश में, हमने दिल का दरवाजा अब बंद ही कर दिया है, क्योंकि हर नया शख्स वही पुराना जख्म देता है। वो बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, तू भी तड़प तड़प के पुकारे के हाय दिल। तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से। दोस्तों, शकील बदायनी के कलाम में जहां एक तरफ मोहब्बत की नजाकत है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मुकाम है जहां शायर साफ कह देता है कि अब राहें जुदा कर लेना ही बेहतर है। गुजरे हैं आज इश्क में हम इस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। अपनी पुरकश आवाज के साथ रफी साहब की आवाज में सुने ये गजल।

ना ये जिंदगी मेरी जिंदगी, ना ये दास्तां मेरी दास्तां, मैं ख्याल वहम से दूर हूं, मुझे आज कोई सदा न दे। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। वो उठे हैं लेके खुम ओ सबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू। तेरा जाम लेने को बज्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। बहुत मखमली तराना बेगम अख्तर साहिबा की आवाज़ में।

दोस्तों, अल्फाज तो सिर्फ एक जरिया है, असली सफर तो उन एहसासों का है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। आज शकील साहब की शायरी और उनकी यादों के साए में हमारा ये सफर अल्फाज से एहसास तक अब खत्म होने को है। उम्मीद है आज की ये मौसीकी और शकील साहब के ये नायाब कलाम आपके दिल के किसी कोने में जाकर बस गए होंगे। आप मुझे यानी आरती रॉय को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी इसी जगह इसी वक्त एक नए मोड़ और एक नई बात के साथ। तब तक गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जज्बातों को जिंदा रखिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यही खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती है, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें। लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं है। किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM जल्द शुरू करने वाला है और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए, आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है, आइए इस खास रिपोर्ट को। और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
2: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है। साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90 प्रतिशत तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है। हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः तीन तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोप कर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते, तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्यूबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकाल कर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबा कर चेक कर ले। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है, तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहे। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करे। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुँचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहे। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय ना लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश ना करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पूसा दिल्ली राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन R&D सेंटर मुरथल सोनीपत ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन उमरुई रोड बोरापानी मेघालय डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ICAR चंपाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं क्या क्या लाभ हैं कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ सुनते रहिए रेडियो टांडिया 90.8 FM आपड़ा रेडियो आपड़ी बात है

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशु पालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है,

0: इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मोरगासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आस पास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहां पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी, और सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रेतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहां पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुआई का सही समय जो रहता है, नीम की बुआई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है, और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुआई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुआई द्वारा लगाया जाता है, और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं, और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
1: आप रेडियो आपड़ी बातें
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है, और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है, और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
3: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं, सामान्य ग्रोइंग नीम है, औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो विकसित प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फूल आना शुरू करते हैं, और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
2: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
4: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू एक ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाय इसके कि हम कोई छाया ले लें, कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यू कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
2: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफको की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है, ताकि यहां इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
5: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की, और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से, जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है, और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहां से शुरू होती है। फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की, और उसका अनुश्रवण उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
2: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
5: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वीएस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहां से और इतना निमोली कहां से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें, और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
6: इसमें पॉलीप्लाइडिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण 2 चीजें होंगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं, और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लाइडिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी, यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात। Yeah.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर

0: वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
1: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरिक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिसमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दे और उसमें जो निमोडिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दे, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पर नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
0: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
1: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है, लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बात चीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य

0: से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा है।
1: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके और 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।
0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा, अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
1: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है, ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
1: ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। FRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
2: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जो पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा, तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बुढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है, तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित

0: एक करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है, तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है, उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
1: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
0: कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे, तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे। तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहां से लाते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से, या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से, या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है, तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे, और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए, टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया, तब हम उसको हमने क्या किया, उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
1: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
2: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
1: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
3: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं, उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल इस जो ये जो तेल है नीम का तेल जो है ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडेक्टिन। एजाडेक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडेक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडेक्टिन ए ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
4: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है। और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
5: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
1: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
6: रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरह से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं, इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधीय खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। संगीत जो शब्दों को एहसास देता है और खामोशी को भी आवाज। आज के हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में हम मिलेंगे उन गायकों और संगीतकारों से जो हिंदी गीतों में आज के जमाने की धड़कन भर रहे हैं, कभी मीठे सुरों में तो कभी सच्चे जज्बातों में। आइए शुरू करें सुरों के इस सफर पर, चलें जहां हर गीत कुछ कहता है और हर धुन दिल से बस जुड़ जाती है। स्वागत है आपका

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम, बहुत ही सौंधा सा एपिसोड लेकर मैं वापस से आपके पास हाजिर हूं, आपका दोस्त समीर। और आज जो मेहमान, जो प्रतिभा, जो गायक, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो हैं रघुनंदन जी। हम प्यार से उनको रघु बुला सकते हैं, ऐसी इजाजत दी है उन्होंने हमें। रघु भाई, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे सभी आज के कलाकार फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। रघुनंदन भाई,
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत लोगों की तरह मैंने भी यहाँ इंजीनियरिंग किया और 10 साल अमेरिका में काम किया और वापस आ गया। I am very passionate about Kannada old songs and the old songs of Hindi. जैसे हमारे हिंदुओं के बहुत भगवान होते हैं ना, तो मेरे लिए भी all singers are भगवान, all the रफी, किशोर, मुकेश और पीवी श्रीनिवास, एस पी बॉल, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं मेरे। मेरे बारे में क्या कहूँ, मैं रेडियो सुनते ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे घर में हमेशा रेडियो बजता था और मेरे पास मुझे कलेक्शन का बहुत शौक है। सो मैंने कैसेट का ह्यूज कलेक्शन कर दिया और उसके बाद जब कैसेट चला गया तो मैंने सीडी कलेक्शन कर दिया, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस कलेक्शन कर दिया ऐसे। तो दैट वे आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड दैट्स हाउ आई बिल्ट माय passion for music.
0: Beautiful.
1: So that's a little bit of introduction about me. Yeah.
0: Beautiful. Actually, this is extremely important. किसी के बारे में अगर आपको जानना हो, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो उनसे आप ये पूछ लीजिए कि what do you collect? N number of times लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन डू दे हैव। बहुत सारे लोग घड़ियां इकट्ठी करते हैं, बहुत सारे लोग कैप्स, हैट्स इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग शूज इकट्ठे करते हैं। आई मीन दीज फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ये करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक बार गौर कीजिए, अपने अंदर झांकिए, कुछ ना कुछ तो कलेक्ट आप कर ही रहे होंगे। बहुत सुंदर। चलिए, रघु जी के इस प्यारे से इंट्रोडक्शन के बाद, उनकी इतनी सारे म्यूजिक कलेक्शन के नाम, हम पहला गीत पेश करते हैं जो रघु जी ने विद ऑल हम्बलनेस हमारे लिए प्रिपेयर

0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शुरुआत रघु भाई। मुझे ये बताइए रघु भैया, आपका जो ये संगीत का सफर शुरू हुआ, आपने बोला कि आप रेडियो के साथ बड़े हुए, फिर आपने कैसेट्स इकट्ठे किए, सीडीज, यूट्यूब वीडियोस वगैरह वगैरह, लेकिन आपने गाना कब शुरू किया, कब आपको रियलाइज हुआ कि आई शुड ऑल्सो जम्प इन टू दिस यू नो रिवर ऑफ म्यूजिक?
1: हमारे घर में जैसे कहा रेडियो हमेशा ऑन होता था, इसलिए कि हमें रेडियो प्रोग्राम के शुरू होने से ही पता चलता था कि टाइम क्या हुआ है।
0: ओके,
1: अगर ये प्रोग्राम है तो माय सिस्टर हैज टू गो टू स्कूल, माय मदर हैज टू गो टू ऑफिस, अगर ये प्रोग्राम है तो मुझे कहाँ जाना है, तो ऐसे सो द रेडियो वाज ऑलवेज ऑन। एंड हमारे घर में सभी लोग गाते थे, बेसुराई से ही, लेकिन हमेशा गाते रहते थे। तो मैंने भी शुरू कर दिया, बट माय सिस्टर इज अ वेल ट्रेन्ड सिंगर, सो उसके इन्फ्लुएंस से मुझे पता चला कि मैं भी थोड़ा बहुत गा सकता हूँ। मेरा कुछ ट्रेनिंग नहीं हुआ है, लेकिन शी इज माय इंस्पिरेशन कि थोड़ा बहुत गाता रहा और बाथरूम सिंगर से लिविंग रूम सिंगर बन गया अभी।
0: That is so cute. I mean, कितनी प्यारे तरीके से, अम्बल तरीके से रघु भाई ने बताया कि वो किस तरह से बाथरूम सिंगर से बेडरूम सिंगर बन गए। भाई वाह, बड़ा क्यूट, बड़ी फनी बात भी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस बात को बताया। भाई वाह, तो चलिए दोस्तों एक प्यारे से गीत का लुत्फ उठाएं जो रघुनंदन भाई ने हम लोगों के लिए तैयार किया है। लीजिए ना, पेश करता हूं।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंग अमेजिंग सिंगिंग। रघु भाई मुझे बताइए, इतना वक्त गुजरा आपको गाना गाते हुए, म्यूजिक को एंजॉय करते हुए, और आपके म्यूजिक दूसरे लोग एंजॉय करते रहे, कोई ऐसा इंसिडेंस जहां पर आपको बहुत चैलेंज आया हो जब आप गाने चले हो, मे बी ऑन स्टेज मे बी नॉट ऑन स्टेज, कोई आपको बहुत चैलेंज आ गया हो, कोई चीज याद पड़ती है आपको?
1: एक दो इंसिडेंट याद है। मैं एक कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा था और क्या हुआ कि वो माइक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है ना, वो बंद हो गया। तो आई हैड टू सिंग एंड ऑल माय म्यूजिशियंस दे वर जस्ट playing, although they could not be heard. It was very, very funny. But I got a lot of appreciation, even though they could hear only my vocals. So that is when I realized that we have to check everything, make sure everything is proper. Bahut sare planning ki zarurat hai, kuch bhi stage pe jane se pehle, iska ye mujhe pata chala. That was one very funny incident that happened in one of the college competitions.
0: Okay. N number of times, dosto, aisa ho jata hai. Aur zahir se baat hai, jis bhi field mein aap hain, phir chahe aap music mein ho, chahe aap IT field mein ho, chahe aap teaching mein ho, chahe aap cooking mein ho, har jagah par ek प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। कहा ही जाता है ना कि 90% प्रैक्टिस एंड 10% परफॉर्मेंस, इट हैपेंस। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम भी जब हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं किसी टैलेंट के साथ, जैसे अभी मैं रघु भैया से बात कर रहा हूं, तो वी ऑल्सो चेक ऑल अवर सिस्टम्स सो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली। और कभी कभी बीच में हम भूल जाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप भी ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से यहां पर मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा। प्रोग्राम के दौरान कई सारे हमारे मित्रों को हमारे एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने टाइम एंड अगेन कई बार कहा है कि वाईफाई ऑफ कर दीजिए, मोबाइल डेटा पर उसको सुनिए। तो मोबाइल डेटा पे बहुत स्मूथली चलता है। अगर वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरा लिंक हम लोग ने दिया हुआ है जो इंटरनेट बेस्ड लिंक है, वो एप्लीकेशन नहीं है, मतलब सिर्फ लिंक को क्लिक करेंगे एंड द रेडियो विल स्टार्ट, वहां पर सुनेंगे तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, इस इंफॉर्मेशन के बताने के बाद हम पेश करें रघुनंदन साहब का ही गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: रघुभाई अमेजिंगली ब्यूटिफुल सिंगिंग, ब्यूटिफुल। तो आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि यू माइट हैव परफॉर्म्ड और संग एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स, लेकिन कोई एक ऐसा सॉन्ग मेरे को बोलिए जो आपके कैरेक्टर पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली सूट करता हो। मतलब अगर हम उसको सुने तो हमें रघु भाई की याद आ जाए।
1: ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब भी मैं चांद को देखता हूं तो मैं थोड़ा रोमांटिक हो जाता हूं। और इतने गाने हैं चांद के बारे में, वो सब याद आ जाता है मुझे। तो आई फील दैट दैट इज गुड रिफ्लेक्शन ऑफ माय पर्सनालिटी। आई गेट वेरी इमोशनल एंड रोमांटिक व्हेनेवर आई कैन जस्ट स्टेयर एट द मून फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो और चौदहवीं का चांद हुआ है, ऐसे गाने जब मैं सुनाता हूँ तो पीपल से दैट इट कम्स आउट वेल, सो दैट इज थिंग आई कैन से।
0: वाओ, सो इसको ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, मतलब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड। चांद जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है या कुछ भी उनके अंदर कंटेंट होता है, चांद उसको अट्रैक्ट करता है और एनर्जाइज कर देता है उन लोगों को। प्रोबेबली आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, हो सकता है रघु भाई को चांद इसी वजह से इन्फ्लुएंस करता हो, चांद उनकी पर्सनैलिटी को निखारता हो। प्रोबेबली आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर बट स्टिल आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड।
1: जो कुछ भी है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा। Whenever I just go to the terrace of my house, I can just stare at the moon for a long time. So,
0: wow. That's
1: my coffee.
0: That's so beautiful. That's so beautiful. Amazing. So, all right. चांद को याद कीजिए, चांद को रिमेम्बर कीजिए, चांद कितना खूबसूरत दिखता है उसको सोचते हुए इस गीत का आनंद उठाइए जो रघु भाई ने हमारे लिए बनाया।

0: बहुत बढ़िया। चलिए, संगीत, म्यूजिक, गाना गाना, ये सब कुछ ऐसी कलाएं हैं जो हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है, हमें टेंशन से दूर कर देती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है, खुश बना देती हैं। तो फिर इसी चीज को सहारा लेते हुए थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं, बादलों में घूमते हुए जो हमारे सपने हैं उनकी दुनिया में चलते हैं। सर, अगर आपको ये कहा जाए कि आज की शाम आपकी है, जैसे कि है ओरिजिनली, और सारे लोग आपको ही सुन रहे हैं, और आपको ये कहा जाए कि रघु भाई किसी भी अपने एक पसंदीदा सिंगर को आप अपने साथ बुला सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, मेन सिंगर आप ही रहोगे लेकिन आपको वो सपोर्ट करेंगे, तो किस सिंगर को आप बुलाना चाहोगे अपने पास?
1: मैं ये मानता हूँ कि रफी साहब की आवाज भगवान का आवाज है जी, तो इसीलिए रफी साहब को बुलाना चाहूंगा। A lot of my stress is relieved whenever I listen to Mohammad Rafi songs.
0: Okay.
1: He is the ultimate for me.
0: That's so beautiful. That's really nice. Rafi sahab ki murid bahut bahut sare log hain aur aapne bahut hi pyara alankar istemal kiya unke liye ki Rafi sahab ki awaaz jaise khuda ki awaaz hai, bhagwan ki awaaz hai. Kya baat hai.
1: Main ye samajhta hu ki sab logon ko bhagwan ka murti dikhai deta hai, picture dikhai deta hai, lekin bhagwan ka awaaz नहीं सुना होगा।
0: वाह, ये देखिए एक डिफरेंट एंगल दोस्तों रघु जी ने हमें बताया है कि भगवान को हम सब देखते हैं, हम अपने निगाहों में अपने विजन में लेकर चलते हैं, लेकिन भगवान की आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी। तो चलिए, एक सिंबलिज्म है, रवि साहब की आवाज भगवान की आवाज हो सकती है, क्या बात है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बार बहुत ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं, रफी साहब को भी याद करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए रघु जी ने जो गीत प्रिपेयर किया, आइए सुने।

0: रघुनंदन भाई, मुझे ये बताइए, कब, किस वक्त, किसने आपको कहा कि आप एक अच्छे गायक बन सकते हो? यू आर अ गुड सिंगर, यू शुड ट्राई, यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. किसने कहा आपको?
1: जाहिर बात है, माई सिस्टर, क्योंकि वो सीखती थी क्लासिकल म्यूजिक वगैरह, और मैं उसके साथ थोड़ा ट्राई करता था, तो वो एनकरेज करती थी मुझे करके गाओ. और इवन माई मदर, शी यूज टू ऑल्सो से यू ऑल्सो शुड कीप सिंगिंग. शी ट्राइड टू पुश मी टू क्लासिकल, टू लर्न अंडर अ टीचर, बट दैट डिड नॉट हैपन. हाउएवर, मैं जब भी रेडियो में कोई भी गाना बजता था तो मैं उसके साथ गाता था, तो इट वाज डेफिनेटली माय मदर एंड माय सिस्टर हु एनकरेज मी.
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट. तो दोस्तों, हम अगला गीत रघुनंदन साहब का डेडिकेट करेंगे उनकी मदर को और उनकी रेस्पेक्टेड सिस्टर को, जिन्होंने एक्चुअली रियलाइज कराया उनको दैट ही कुड बी अ गुड सिंगर. ही इज अ गुड सिंगर, और उनकी वजह से ही हमको आज रघुनंदन साहब के गीत सुनने को मिल रहे हैं. तो चलिए ना, डेडिकेट करते हैं इस सॉन्ग को और सुनते हैं.

0: बहुत खूब। अब अपनी पसंद के बारे में बताइए रघु भाई, किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? फोक म्यूजिक, डांस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गजल, भजन, किस तरीके का म्यूजिक?
1: मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं।
0: ओके,
1: एनीथिंग दैट इज स्लो, वेरी मेलोडियस विद अ गुड ट्यून दैट रिमेन्स ऑन माय लिप्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज व्हाट आई लाइक। स्पेशली एज आई सेड, ऑल द सॉन्ग्स ऑन द मून सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी, चौधरी का चांद हो,
0: ओके,
1: रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते।
0: चलिए, चौधरी का चांद हो इज वन सॉन्ग जो आपने बताया कि आपको बहुत बहुत पसंद है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल दीजिए सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग।
1: खुदा भी आसमां से जब जमीन पर वो ऐसे ऐसे गाने ऐसे स्लो मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है।
0: गट यू, गट यू, गट यू। तो दोस्तों, ये वो सॉन्ग्स हैं जो अमर हैं रफी साहब की बहुत ही प्यारी सी, यू नो, गॉड लाइक आवाज में, जो हमेशा बहुत फेमस रहे हैं। रघु भाई उन्हीं सॉन्ग्स का जिक्र कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं सॉन्ग्स को डेडिकेट करते हुए, इन्हीं सॉन्ग्स को याद करते हुए एक और इसी तरीके का सॉन्ग सुनते हैं रघु भाई की आवाज में।

0: बहुत खूब। रघु भाई, मैं सभी लोगों को पुश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि टैलेंट है मेरे सामने, मुझे दिख रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये टैलेंट और बढ़े, बहुत सारे लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे, आपके टैलेंट को वो जाने, तो आगे बढ़ते हुए अपने टैलेंट को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आप तो कॉरपोरेट को बिलोंग करते हैं ना, वहां पर तो और यही लैंग्वेज यूज होती है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? सो आपके टैलेंट का नेक्स्ट लेवल क्या है?
1: अभी बिग स्टेज पे अगर गाने का मौका मिले वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर नहीं समझता, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अभी छोटा छोटा फंक्शंस में गा रहा हूँ, अगर थोड़ा बिग स्टेज मिले वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, तो एनीथिंग ऑन अ बिग स्टेज वुड बी वेरी गुड।
0: ऑलराइट, दोस्तों, रघुनंदन जी बहुत अम्बल हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं, बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े स्टेज पर जाकर गाना उनका नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों, आप सोचिए आपके टैलेंट का नेक्स्ट लेवल क्या है। सबका अलग अलग होगा, जैसे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स घूमते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे ऑर्बिट्स हैं। किसी का ऑर्बिट थोड़ा बड़ा हो सकता है, किसी का ऑर्बिट छोटा, बट देन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। सो वी विल टेक अवर टैलेंट टू द नेक्स्ट लेवल, जब भी हमें मौका मिल जाएगा। तब तक आइए ना एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रघुनंदन साहब की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। रघु भाई, अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त के बारे में हमें बताइए। वो क्यों आपके इतने अच्छे दोस्त हैं? आपको भला उनके अंदर ऐसा क्या पसंद आता है जिससे कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं? मैं मानता हूं आप कहेंगे बहुत सारे सब लोग हमारे दोस्त हैं, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट एंड रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट उसमें भी देखिए ये सच्ची बात है, एक ना एक तो कोई होता है जो बिल्कुल दिल के नजदीक होता है, कौन है वो?
1: मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पूछ लीजिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो हमेशा चाइल्डहुड फ्रेंड ही रहेगा। इवन इफ यू आर 50-60 डजंट मैटर, हमेशा आपका चाइल्डहुड फ्रेंड ही सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। तो मेरा एक दोस्त है महेश, एंड वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन म्यूजिक क्विजेस, बहुत सारे म्यूजिक क्विज कॉम्पिटिशन होते थे बैंगलोर में, हम लोग हमेशा फर्स्ट या सेकंड आते थे। तो एंड वी हैड वेरी सिमिलर टेस्ट इन एवरीथिंग, वेदर इट इज स्पोर्ट्स और स्टडीज और म्यूजिक, सो वो मेरे लिए बहुत खास है। वी बिकेम एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन वेन एवर इट केम टू एनी क्विज रिलेटिंग टू म्यूजिक, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत पूछते थे इस सॉन्ग का लिरिक्स राइटर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, फिल्म कौन है। सो हम लोग एक डेटाबेस रखते थे, तो इसी वजह से हम लोगों का फ्रेंडशिप बहुत चाइल्डहुड से ही, तो लाइक दैट वी बिकेम एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन व्हेन इट केम टू म्यूजिक क्विजेस ऑल अराउंड इन ऑल schools around Bangalore. So I would take his name for sure.
0: Okay, all right. I certainly appreciate this. Or दोस्तों अगला गीत हम महेश जी के नाम से ही, महेश नाम बताया ना सर आपने?
1: हाँ,
0: all right, उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट एंड एंटिसिपेट कि महेश भाई भी आपके इस प्यारे से प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। तो महेश भाई लीजिए, आपके लिए गाया हुआ रघुनंदन साहब का ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत सुंदर। रघु भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मेरे को आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे सारे आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: मुझे बस यही कहना है कि डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट द वे यू सिंग, जस्ट कीप सिंगिंग, सिंग फॉर योरसेल्फ, दैट इज बीन वन लर्निंग फॉर मी। देयर इज आल्सो आई थिंक a proverb in Kannada which says that just sing for yourself, because that's what all the koyal or the cuckoo bird does. It just sings for itself. It doesn't care if anybody likes it or not. So if it makes you happy, just sing, doesn't matter. And music, as you said earlier, bahut sukoon deta hai, that is an escape from realism. And that is what gets you good sleep. That is what gives you, fills your body with some good emotions and all that. So just sing without worrying too much. And of course, also put some effort into practicing so that you also become a good singer. Wow. So that's all I have to say. Just sing.
0: Just sing. Okay. Bilkul, wo ek... चलिए जाने दीजिए, वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हमको नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन उसकी लाइन अच्छी है, जस्ट डू योर ओन थिंग, अपने करते चलिए, जस्ट सिंग, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, ये हैं रघुनंदन साहब जिनसे बातचीत हमने की, जिनके गीत हमने सुने। रघुनंदन साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज स्टे विद अस एंड कीप सिंगिंग। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, फॉर इनवाइटिंग मी। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।

तो दोस्तों, संगीत की इन मुलायम लहरों के साथ अब हमारे कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। आज के कलाकारों के सुरों ने शायद आपके दिल को छुआ हो, किसी भूली याद को जगाया हो, या बस एक सुकून सा भर दिया हो। याद रखिए, संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं, महसूस करने का नाम है। इसी एहसास के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई आवाजों, नए गीतों और नए जज्बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो और देखिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, हम हैं आपके रेडियो दोस्त समीर, नितिन, इंद्रानी, आलोक जी, तनुषा और बासु। फिर मिलते हैं।